मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 16वीं तिथि तदनुसार 7 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
3: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध

0: सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सृष्टि के कण कण में समाये देवाधिदेव महादेव, जो आदि भी हैं और अनंत भी, उनकी कृपा जिस पर भी हो जाए उनका जीवन धन्य है।

संसार में यदि ईश्वर के साक्षात वात्सल्य और करुणा को किसी रूप में देखा जा सकता है तो वो है माँ का स्वरूप।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर भजन। सिय पिय प्रेम विवस सब जानी, कही न सकही मन की गतिबानी। सखी भाव रस अति अनुरागी, राम चरण जेहि प्रीति सुहागी।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये सुंदर भजन। श्रोताओं, आपका दिन शुभ, शांतिमय और ऊर्जावान व्यतीत हो, इसी मंगल कामना के साथ आज का ये आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242।

0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं राजा राम मोहन राय के विचार।
2: राजा राम मोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं, उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफ़ेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने 2 तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे राजा राम मोहन के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी विषय पर डॉक्टर अजय कुमार से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।

0: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटन है। तमाम तरह के खेती करत बाटन, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे साग सब्जी वाली हो, चाहे दलहनी तिलहनी, हर प्रकार खेती करत बाटन है। आज जौन बातचीत के विषय बा वो प्राकृतिक खेती के बारे में, कि प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी का है, ये पे बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटन डॉक्टर अजय कुमार जी, जवन की सबके जानकार बाटन। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। हमारे किसान भाइन के बतावें कि प्राकृतिक खेती जोन हो तो का है, वो का जानकारी दे चाहते हैं, बताओ आप जरूरी जोन बा।
1: प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों व रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उन्हीं को तत्वों के रूप में और कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
0: अच्छा अच्छा
1: प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका ने वर्ष 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था।
0: अच्छा,
1: प्राकृतिक खेती जो है एक पारंपरिक भारतीय पद्धति से निकली हुई रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। प्राकृतिक कृषि का उद्देश्य जो है वो उत्पादन की लागत को कम करना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना तथा संसाधनों का उपयोग करना। प्राकृतिक खेती में उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई जैसे महंगे इनपुट को बंद करना। प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाले इनपुट में से मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन, जिससे धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती जाती है।
0: आपका कहे का मतलब कि जोन खेती बा, पहली बात ओकर लागत कम हो, हाँ, एकरे लिए जोन बाटे जोन प्राकृतिक चीज की केचुआ रहे ना, जैविक हमें जोन सब चीज डाला जाता रहा, पहले रहत रहा माटी में, वो सब बना रहा है, उकरे हिसाब से खेती।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: जोन बा जीरो बजट प्राकृतिक खेती का है, एकरे बारे में कुछ बताऊँ।
1: इसे हम जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। सुभाष पालेकर जिन्हें 1990 के दशक में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र अमरावती जिले में अपने खेत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर सफलता पाई।
0: अच्छा,
1: जीरो बजट यानी शून्य बजट, कोई पैसा नहीं लगाना है। प्राकृतिक खेती जिसमें किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा
1: जीरो बजट प्राकृतिक खेती के अनुसार 98% से अधिक पोषक तत्व जिनकी फसलों को आवश्यकता होती है पहले से ही प्राकृतिक में मौजूद हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: तथा शेष 1.5 से 2% मिट्टी से लिए जाते हैं ये, और इसी को हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी कहते हैं।
0: मतलब गौ आधारित मतलब जो गाय गोबर गोमूत्र से।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: प्राकृतिक खेती में हमारी देसी गाय का बहुत महत्व है। कहते हैं कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से लेके 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं इसके अंदर।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इस गाय के गोबर और गौमूत्र में गुड़, बेसन और जीवाणु युक्त मिट्टी डालकर किण्वन यानी फर्मेंटेशन से सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाकर इसे तैयार किया जाता है, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, जो जब खेत में हम इसे डालते हैं तो ये करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु भूमि में उपलब्ध तथा वायुमंडल में उपलब्ध तत्वों से पौधों का भोजन निर्माण करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ये प्राकृतिक खेती का महत्व के बारे में कुछ बताऊँ।
1: हाँ, प्राकृतिक खेती का महत्व इसमें हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक खेती जो है एक तो उत्पादन की लागत को कम कर देती है, क्योंकि जितने भी जो भी हम इनपुट तैयार करते हैं वो जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं का हम उपयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है।
0: प्रकृति

0: जवन मिला था वही
1: वही
0: करना।
1: करना किया जाता है। इसलिए प्राकृतिक खेती जो है बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर देती है। जैसे आजकल बहुत दम देखते हैं कि कैंसर और किडनी फेलियर हो रहा है, वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस
0: अच्छा
1: प्राकृतिक
0: अच्छा
1: खेती के माध्यम से जल की खपत को न्यूनतम किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में सहायक है।
0: अच्छा
1: आज जो
0: अच्छा
1: रसायनों के बहुत अधिक प्रयोग करने के कारण जो हमारे लाभकारी जीवाणु कवक थे वो सब खत्म हो गए हैं, तो जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये फिर से हमारे उसमें पुनर्जीवित हो जाते हैं, जो
0: अच्छा
1: हमारे
0: अच्छा
1: वायुमंडल से और जमीन के अंदर से तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक खेती में पशुधन का एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है।
0: अच्छा। एक बात आवाज कि इसके कुछ जो आधार स्तंभ है ना प्राकृतिक खेती को काका है ना करे बारे में बताऊँ कुछ।
1: अब इसके आधार स्तंभ जिसको हम पंचामृत भी कहते हैं, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जीवामृत है, जीवामृत को हम बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों एवं केचुओं को बढ़ाने का काम करते हैं। जो लाभकारी जीवाणु और कवक होते हैं वो उसमें बढ़ते हैं, और जब हम इसको डालते हैं तो हमारे जो केचुए जो लगातार रसायनों के प्रयोग करने से जो केचुए खत्म हो गए, नष्ट हो गए, वो फिर से उसमें पुनर्जीवित होने लगते हैं और उसमें बढ़ने लगते हैं। दूसरी बात, दूसरा है बीजामृत। बीजामृत ये जो है एक कवक नाशी है, और ये मिट्टी से होने वाले बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा करता है। जैसे जो हमारे बीज जनित रोग हैं और भूमि जनित रोग हैं उनसे इसका बचाव करता है। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट है वो आच्छादन है। जब हम आच्छादन करते हैं तो जो खरपतवार की वृद्धि है उसको रोकने में सहायक होती है, और
0: अच्छा
1: दूसरी
0: अच्छा
1: नमी को संरक्षित कर रखती है, नमी को संरक्षित रखती है, नमी को बनाए रखती है। और चौथी चीज़ है वो वापसा,
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा
1: सिंचाई की ज़रूरत को कम करने हेतु प्रोत्साहन, जिसमें मिट्टी में पानी के अणु और हवा दोनों में मौजूद होते हैं, उनको बनाए रखती है। और इसके
0: अच्छा
1: साथ
0: अच्छा
1: साथ पांचवा है वो इंटरक्रॉपिंग है। जब एक फसल के साथ हम दूसरी फसल को उगाते हैं तो उससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है।
0: अच्छा। अब बता बात आवत की जो जीवामृत आप बताए ना ओकरे बारे में कुछ बताओ कैसे बनाई है कुछ।
1: हाँ, जीवामृत, जैसे मैंने बताया कि जीवामृत जो है सूक्ष्म जीवाणु का एक महासागर है जो पेड़ पौधों के लिए भोजन तैयार करता है। ये जीवामृत बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम गाय का गोबर चाहिए,
0: अच्छा अच्छा
1: 10 लीटर गौमूत्र चाहिए, 2 किलोग्राम गुड़ चाहिए, 2 किलोग्राम बेसन चाहिए, एक मुट्ठी जीवाणु युक्त मिट्टी चाहिए। उस
0: अच्छा
1: जगह
0: अच्छा
1: की मिट्टी जहाँ पर कोई भी रसायन का उपयोग नहीं किया गया हो,
0: अच्छा
1: अगर
0: अच्छा
1: बरगद या पीपल के पेड़ के पास की तो वहाँ की भी मिट्टी हम ले सकते हैं।
0: अच्छा
1: और उसके
0: अच्छा
1: साथ साथ 200 लीटर पानी, और इन सब को हमको एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है 200 लीटर का। उसमें कोई भी धातु का ड्रम नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का ड्रम हो, और उसमें हम पानी डाल करके सुबह इसको गोबर को, गौमूत्र को, गुड़, बेसन और मिट्टी को डाल करके, और इसको जो है लकड़ी के सहारे घड़ी की सुई की दिशा में हमें सुबह शाम घुमाना है। इसे 2 दिन तक 48 घंटे हम इस प्रक्रिया को करेंगे। सुबह शाम 2 से 3 मिनट हम इसको घुमा करके और उसे बोरे से या जूट के बोरे से या सूती कपड़े से इसे ढक करके रख देंगे
0: यानी मिलावे बरोबर।
1: मिलाने के लिए। लेकिन इसको इस बात का ध्यान रखना कि घड़ी की सुई की दिशा में इसे मिलाना है, उल्टा नहीं मिलाना है, क्योंकि जब हम उल्टा मिलाते तो पानी का प्रेशर नीचे की तरफ मारता, तो जो हमारे लाभकारी जो नन्हे जीवाणु जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो नष्ट होने के नष्ट हो सकते हैं। इस जीवामृत का जो प्रयोग करने की विधि इस तरह से, जब हम अपनी सिंचाई करते हैं, जैसे पहली सिंचाई करेंगे तो उस समय हम सिंचाई के पानी के साथ में दे सकते हैं। अगर वहाँ पे हम सिंचाई के साथ नहीं दे सकते तो हम उसका अपने खेतों में उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी सिंचाई में, फिर तीसरी सिंचाई में, जब हम सिंचाई करें तो हर बार अगर हम इसको दे दें 3-4 बार, तो हमारी भूमि के अंदर लाभकारी जीवाणु की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जो हमारे वातावरण से, हमारी ज़मीन से, उन सभी तत्वों को लेकर के हमारे पौधों को उपलब्ध कराएगी, जिससे तत्व हमारे आसानी से मिल जाएंगे।
0: अगर ये प्राकृतिक खेती की है जाए तो एक तो लागत कम आए, दूसरी चीज वहाँ जो फसल होए रोग बेरामी से मुक्त रहे भैया, और कम से
1: बिल्कुल
0: कम प्रदूषण न फैले,
1: बिल्कुल,
0: और खेत भी बढ़िया रहे, माटी भी
1: खेत
0: बढ़िया
1: खेत
0: रहे।
1: भी अच्छा रहेगा।
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया हो आप आया हमारे किसान भाई आपके बातन पर ध्यान दें, उनका फायदा हो, आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी। डॉक्टर अजय कुमार से राकेश कुमार मौर्य की ये बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार।
1: रक्तचाप जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा या हो तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि उच्च रक्तचाप के लक्षण ज्यादातर लोगों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ लोगों में सुबह उठने पे सर के पिछले भाग में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में उच्च रक्तचाप की वजह से जब उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो जाना, इस्केमिक हार्ट डिजीज में जैसे छाती में दर्द हो जाना, सांस फूलना या सडन हार्ट अटैक का हो जाना, हार्ट फेल्योर जिसमें चलने से सांस फूलना, शरीर में सूजन आ जाना या स्ट्रोक एकाएक जो है फालिस पर जाना, पक्षाघात हो जाना, किडनी फेल्योर शरीर में सूजन आना, पेशाब का कम होना या रेटिनोपैथी एकाएक अपने आंखों का विजन चले जाना बिकॉज ऑफ सडन रेटिनल हेमरेज, ऐसी जानलेवा लक्षण जब हमें आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें उच्च रक्तचाप की बीमारी है और हमने समय रहते उसका इलाज नहीं कराया। अतः हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप के माध्यम से ब्लड प्रेशर की जानकारी समय समय पे लेनी चाहिए और यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसका इलाज कराना चाहिए। उच्च रक्तचाप यंग लोगों में करीब 12-30% हमारे युवाओं में होता है। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण जो है सिगरेट स्मोकिंग अथवा धूम्रपान, हाई मेंटल स्ट्रेस अथवा मानसिक तनाव और डिप्रेशन, मोटापा, ज्यादा खाने में नमक लेना अथवा सॉल्टी भोजन, अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आलसी जीवन शैली और रात्रि में कम सोना, कम 7 घंटे से कम सोना, ये सारे मुख्य कारण यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के हैं। मानसिक तनाव, अवसाद जैसी दिक्कतें आज के बच्चों में अत्यधिक पढ़ाई के प्रेशर और कंपटीशन की तैयारी की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे आउटडोर गेम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बैडमिंटन जैसे आउटडोर एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं। उसके सोने और जगने के टाइम भी बदल गए हैं। युवा रात्रि में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। खाने में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यादा फैटी ऑयली भोजन, सॉल्टी फ्राइड ऑयली फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उनमें मोटापा और मोटापा जनित बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। जब वो अपना कैरियर शुरू करते उससे पहले ये बीमार हो जाते हैं। और ये युवा मेंटल स्ट्रेस की वजह से सिगरेट पीना, शराब पीना जैसी बुरी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। अतः इन समस्याओं को हटाने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। खाने में हमें स्वस्थ भोजन, सीजनल फल, हरी सब्जियां, सलाद, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर आदि लेना चाहिए और हाई फैट डाइट, सैचुरेटेड फ्राइड राइस, फ्राइड डाइट नहीं लेना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा अथवा खाने में बनाने में नमक कम डालें या सलाद, फल आदि में ऊपर से नमक ना डालें या जिसमें नमक ज्यादा रहता है जैसे पापड़, भुजिया, अचार, उसका सेवन कम से कम करें। प्रतिदिन आधा घंटा आउटडोर एक्टिविटी लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या बैडमिंटन, साइकिलिंग, तेजी से दौड़ना या योगिंग, स्विमिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं। ऑफिस में जब आप रहते हैं तो लिफ्ट की जगह पे सीढ़ियों से चढ़ें। ऑफिस में जाते समय आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का यूज करें। घर में छोटे छोटे कामों के लिए या तो पैदल काम करें या साइकिल का यूज करें। अपने वजन को कंट्रोल रखने के लिए खान पान में सतर्कता, अपने आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं और वजन के लिए अपना आइडियल वजन जो होता है वो मैंने बताया कि हाइट 5 फीट है, मतलब 150 सेंटीमीटर है, तो हमारा आइडियल वेट 50 kg का होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज, खाने में परहेज, पर्टली मीठी चीजें, घी तेल की चीजों का परहेज रखें और कैलोरी कम लें। अल्कोहल और शराब ना पिएं, उससे ना सिर्फ हार्ट की बीमारी होती है बल्कि लीवर फेल्योर, लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए ध्यान या मेडिटेशंस, योगा, आध्यात्मिक चिंतन, मंदिर जाना, सत्संग में जाना, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना और अपने जीवन उद्देश्य को जानना, अपने मन के निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ना और उसका मनन चिंतन करना, अपने मानसिक

0: विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और चोरी, बेईमानी, घूसखोरी ऐसे मनोविकारों को दूर करें, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह पाएं। रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और इसलिए हमें साल में एक बार अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, रीनल फंक्शन टेस्ट, ECG आदि जरूर कराने लेनी चाहिए, जिससे यदि ऐसी कोई चीजें हों तो हमें उसके लिए तुरंत इलाज लें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता, युवा में बढ़ता रक्तचाप कारण और उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण काकले रोनेट वादन और दिन में 12:15 पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मीरा तिवारी के स्वर में भजन और गीत प्रसारित।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे हरीश चंद्र पांडे और विनीता तिवारी। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

दिन में 12:30 पर हेल आपकी पसंद प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी संस्कृति द्विवेदी की वार्ता, फैशन टेक्नोलॉजी में करियर की संभावनाएं। 2:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया शाम 5 बजे, युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी शाम 5:15 पर, शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी।

रात 8 बजे फिल्म संगीत, रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के

0: यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु पञ्च जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। आइए सुनते हैं केदारनाथ फिल्म का ये भजन अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

अभी आपने सुना अलका याग्निक के स्वर में ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के करीब 2 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित, बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनगणना, 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा स्वगणना का विकल्प। और यूपी T20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित 800 परिवारों को राहत सामग्री, आश्रयहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और राहत राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी मजबूती और संवेदनशीलता के साथ खड़ी है।
1: आपदा की इस घड़ी में आप सबको राहत सामग्री के साथ साथ मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता है तो प्रधानमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में SDRF और PAC की अतिरिक्त कंपनियों को बाढ़ नियंत्रण, राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। श्री योगी ने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे भी करवाया जाएगा और आकलन के आधार पर राहत राशि मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित तथा प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान श्री योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ प्रभावित जनपद चित्रकूट के निरीक्षण के बाद अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, फसल तथा मकान की क्षति का तत्काल सर्वे कराकर पात्र लोगों को नियमानुसार मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण का चिन्हांकन कर उसे हटाने, नदी पर बने फुट ओवर ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट कराने तथा मंदाकिनी में सीवर और नालों का पानी किसी भी दशा में न जाने देने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चित्रकूट धाम के और मठ मंदिरों को हुए नुकसान का आकलन कर सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसल क्षति का सर्वे शीघ्र पूरा कराया जाए और पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और कई नदियां अब भी उफान पर हैं। एक रिपोर्ट।
3: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। प्रशासन ने गर्रा और खाखरा नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के कारण लगातार कटान हो रही है और यातायात बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रावस्ती जिले की जमुनहा तहसील के वीरपुर लोहकैया में राप्ती नदी के तेज बहाव से आसपास की जमीनें जलमग्न हो गई।

0: बाढ़ और बारिश को देखते हुए बिजनौर, बदायूं, रामपुर और पीलीभीत के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश से कल कानपुर में मकान गिरने से 4, बदायूं में 1, वहीं महोबा में एक गड्ढे में बरसात का पानी भर जाने के कारण उसमें डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जनसंख्या की गणना आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक की जाएगी।
1: यूपी, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के मैदानी इलाकों में जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा राज्यों में 2027 के शुरू में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को समय से पहले कराया जा रहा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में जारी राजपत्र अधिसूचना

0: यूपी उत्तराखंड सहित चार राज्यों के मैदानी इलाकों में जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा राज्यों में 2027 के शुरू में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को समय से पहले कराया जा रहा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि इन क्षेत्रों के लोग 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक स्वयं जानकारी दर्ज कराने का विकल्प अपना सकते हैं। मुख्य गणना के बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी तक संशोधन चक्र भी चलाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के मुख्य न्यायाधीशों सहित 65 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल ने कल आगरा में ताजमहल और वहां का किला देखा। एक रिपोर्ट।
2: प्रतिनिधि मंडल में रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 10 से ज्यादा देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। हल्की बारिश के बीच ताजमहल पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने ताज के सौंदर्य को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। सदस्यों ने ताजमहल के इतिहास, निर्माण शैली और पच्चीकारी कला के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल आगरा किला पहुंचा और वहां के कई ऐतिहासिक स्थलों तथा मुगल कालीन स्थापित्य कला को देखा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: हज 2027 के लिए चयनित आजमीने हज संबंधी मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस 2 चरणों में कराना अनिवार्य किया गया है। इसमें पहला चरण चयन के बाद और दूसरा हज यात्रा की उड़ान से पहले कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि पहले चरण में आजमीने हज को सरकारी चिकित्सा केंद्र से एलोपैथिक डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सिलसिले में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी T20 लीग के फाइनल मुकाबले में कल मेरठ मैवरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेरठ की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 109 रन पर ही ढेर हो गई। संभल जिले के बहजोई इलाके में कल सुबह एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर बमरेटा गांव के समीप उस समय हुआ जब सवारियों से भरी एक टेम्पो की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में कराई गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के करीब 2 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित। बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनगणना। 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा स्वगणना का विकल्प। और यूपी T20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मैवरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन, राग है भोपाली तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे पंडित राम कृष्ण का क्लेरोनेट वादन, राग था भोपाली तोड़ी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे सुदर्शन राम। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की

0: अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को

0: यह उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
5: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
6: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
7: इन देशों में वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह

0: बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में दो दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112334 81, 0112371717117 और 0112334444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे, ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी, एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union and Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today.

0: एक शोबे की शराकत का मकसद यह है कि इसरो भारत के खलाई प्रोग्राम के अगले दौर में पुख्ता टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों में इजाफा करने के साथ साथ अपनी सरगर्मियों को मजबूत तर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। इसरो ने कहा कि खलाई शोबे की असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निजाम तश्कील देना है। इसरो ने कहा कि भारतीय सनत अपनी पुख्ता सरगर्मियों में इजाफा कर सकती है, इससे बड़े पैमाने पर पैदावार तिजारती अंदाज इख्तियार करने, इख्तिरा और आलमी मार्केट तक रसाई की जा सकेगी और इसरो की साइंसी और तकनीकी अफरादी कुव्वत, जदीद तरीन तहकीक, अगले दौर की टेक्नोलॉजीज और पेचीदा कौमी मिशनों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद उमूर दाखिला की वजारत के बैन रियासती काउंसिल का सेक्रेटरिएट करेगा और इसकी मेजबानी गोवा सरकार करेगी। मगरबी जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली, नीज दमन और दीव पर मुश्तमिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस मीटिंग में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के वज़रा आला और सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। दादरा और नगर हवेली, नीज दमन व दीव के नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा लेंगे। मीटिंग में ऐसे मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा जिनके हल के लिए रियासतों के दरमियान या मरकज रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल जरूरी है। काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से बाहमी तालमेल में इजाफा करने और मुश्तरका मफादात के मामलात पर यकजा होकर आगे बढ़ने का मौका फराहम होता है। मीटिंग में मरकज और रियासतों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को परचम अता करेंगे। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता करेंगे। आज रियासत के उनके दौरे का आखिरी दिन है। हुसूलियाबी की यह तकरीब रियासती पुलिस फोर्स के लिए एक फखरिया लम्हा होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये तकरीब तलाई गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिब की जाएगी। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या राष्ट्रपति का निशान पुलिस फोर्स को दिए जाने वाले आला तरीन एजाजात में शामिल है। गोवा पुलिस के लिए ये एजाज खुद को वक्फ कर देने वाली खिदमात, उसूल पसंदी और रियासत के अवाम के तहत साबित कदमी का एतराफ है। इस तकरीब से पहले जनाब अमित शाह मगरबी जोनल काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे जिसमें इलाकाई अहमियत के मामलों पर बातचीत की जाएगी। निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओपेक प्लस के सात असल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमूई हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरतेहाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये फैसला ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार में सितंबर के महीने में तकरीबन 188,000 बैरल रोजाना के इजाफे के बाद किया गया है। यह इजाफा तेल की पैदावार में तकरीबन 10,65,000 बैरल रोजाना की रजाकाराना कटौती के अमल को पूरा करने के बाद किया गया है। अमल का यह सिलसिला 2023 में शुरू हो गया था। यह मीटिंग ईरान और आबनाए हुरमुस के आसपास तनाजे में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदात में लगातार रखना अंदाजी के पसमंजर में मुनक़द की गई है। इस रुकावट की वजह से आलमी तेल सप्लाई और तेल की कीमतों से मुतालिक ओपेक प्लस की पैदावार के फैसलों पर महदूद तौर पर असर पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल मई में इत्तेहाद से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वो कौमी मफाद और मार्केट की अशद जरूरतों को पूरा करने के लिए मौसर तौर पर तआवुन का पाबंद है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस की मीटिंग मार्केट के हालात और पैदावार की सतह का जायजा लेने के लिए अक्टूबर में मुनक़द होगी। ईशानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ईरान के सरकर्दा अफसर ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में आबनाए हुरमुस से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया जाएगा और उनके साथ राब्ता किए बगैर इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को ईरान की बंदिशों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि यह इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी की हद से खलीज फारिस के इलाकों की हद तक होगा जो जहाज किसी भी तरफ से आबनाए हुरमुस की तरफ जाएंगे और इस इलाके में दाखिल होंगे उन्हें बंदिशों का सामना करना होगा। ये बात ईरान के सरकारी मीडिया ने बताई है। उज्जैन में भगवान

0: कपिलेश्वर की शाही सवारी को आज आकाशवाणी पर लाइव नशर किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन इसे दिन में 2 बजे से रात 10 बजे तक नशर करेगा। ये नशरिया मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर दस्तियाब होगा। सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी नदी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी की सतह के पेश नजर हुक्काम करीबी नजर रखे हुए हैं। पटना में मुख्तलिफ घाटों पर दरिया की आबी सतह खतरे की बुलंद तरीन सतह को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। 24 जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई नदियों में अब भी तुफानी है। इंतजामिया ने गर्रा और ककरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। इधर मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के AFC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। AFC का 20 साल तक की उम्र का ये एशियन कप टूर्नामेंट चीन में अगले साल 24 मार्च से 10 अप्रैल तक खेला जाएगा। बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल शेंजेन में चाइना मास्टर्स में मर्दों के डबल्स का खिताब हासिल कर लिया। भारतीय जोड़ी ने इस फाइनल मैच में चीन की हे जिनतिंग और रेंग जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराकर चाइना मास्टर्स का पहली बार यह खिताब जीत लिया। इस जोड़ी का इस सीजन का ये दूसरा खिताब है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्लाह।
1: शुक्रिया कौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने दिल्ली में एक कसीर मंजिला इमारत के मुनहदिम होने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि ये इमारत पुरानी थी और बेसमेंट में मरम्मत के दौरान यह हादसा पेश आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए महलुकीन के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा में नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक एक खाका जारी करते हुए कहा कि भारत को 2029 तक इस लानत से छुटकारा दिलाना है। इस खबर को आज के अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के इस बयान को नुमाया किया है कि आलमी नक्शे पर भारत का मौकिफ वाज़ह है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इमारत इनदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है और इसे इको निज़ाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए न कि निजकारी के नजरिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि

0: अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है, अच्छे होंगे, खुश होंगे। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है रिश्तों का महत्व और बदलता समाज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, जैसे कि हमने बताया था आपसे कि हम बात कर रहे हैं रिश्तों का महत्व और बदलता समाज की। कहते हैं कि इंसान अकेला पैदा होता है, लेकिन जीवन की खूबसूरती रिश्तों से बनती है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त पड़ोसी और हमारे आसपास के लोग, ये सभी हमारे जीवन को भावनाओं से जोड़ते हैं। रिश्ते केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होते। कई बार कोई अनजान व्यक्ति भी अपने व्यवहार और अपनेपन से हमारे लिए बेहद खास बन जाता है। जैसे कि आप श्रोता, एक अच्छे रिश्ते का एहसास होता है जब हम आपके साथ होते हैं। रिश्तों की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। खुशी में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख में जो हाथ थामे वही सच्चा रिश्ता होता है। लेकिन आज हमारा समाज तेजी से बदल रहा है। पहले परिवारों में एक दूसरे के लिए समय अधिक हुआ करता था। संयुक्त परिवारों में दादा दादी की कहानियां, भाई बहनों की शरारतें और परिवार के साथ बैठकर भोजन करना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। आज तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ाई हैं। मोबाइल पर हम सैकड़ों लोगों से जुड़े होते हैं, मगर कभी कभी अपने घर में बैठे व्यक्ति से बात करने का हमारे पास समय नहीं होता। सोशल मीडिया पर हम अपने ज़िंदगी की तस्वीरें साझा करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अपने मन की बात करने के लिए किसी अपनेपन की तलाश करते रहते हैं। बदलता समाज अपने साथ नई सोच, नई संभावनाएं लेकर आया है। आज बच्चे अपने करियर को लेकर जागरूक हैं, युवा आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और महिलाएं भी अपने सपनों को पूरा करने में आगे लगी हुई हैं। ये बदलाव भी ज़रूरी है, लेकिन आधुनिकता का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने रिश्तों को ही पीछे छोड़ दें। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि पैसा, सफलता और सुविधाएं जीवन को बेहतर तो बना सकता है, लेकिन अपनापन और रिश्ते जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। श्रोताओं, एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हों लेकिन उन्हें बांटने वाला कोई अपना ना हो, तो क्या वह खुशी पूरी होगी? शायद नहीं। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, उन्हें समझिए और सबसे ज़रूरी है उन्हें निभाइए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर उन लोगों के पास बनती हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं।

रिश्तों को मजबूत धागों की तरह सहेजना पड़ता है। सिर्फ जरूरतों पर मिलने वाले लोग साथी हो सकते हैं, आत्मीय नहीं। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार प्रयागराज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर।

श्रोताओं, कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए। फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत आतिफ असलम की आवाज में, संगीत दिया है प्रीतम ने और रचना है इरशाद कामिल की।

अपना बना ले पिया फिल्म भेड़िया, संगीत सचिन का और गायक हैं अरिजीत सिंह।

फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, गाना थोड़ी देर में, सिंगर श्रेया घोषाल, संगीत है फरहान सईद का और बोल दिए हैं कुमार ने।

इस खूबसूरत गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम, कृपया इंतजार करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
1: कुशीनगर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कलेक्ट्रेट भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा आजादी के अमर सपूतों एवं क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि
2: जो जो भी कार्य क्षेत्र हमारा है, जहाँ जहाँ भी जिस जिस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, उस काम में अपना 100% योगदान इस राष्ट्र निर्माण के रूप में दें। हम ये मान के चलें कि हमारा छोटा सा काम भी जो है इस राष्ट्र को आगे

0: लेके जाएगा।
1: इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा सहित कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन पर तथा मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने विकास भवन पर ध्वजारोहण करते हुए उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संभ्रांत नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को सम्मानित किया। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित बौद्ध, जैन एवं कुशीनगर के आसपास के खुदाई में प्राप्त अन्य प्राचीन काल की धरोहरों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर के व्यापक सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि संस्कृत विभाग के अंतर्गत कराए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य की मूल स्वीकृति लगभग 22,53,00,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि परियोजना का कार्य 12 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया गया है तथा इसे 11 जनवरी 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के अंतर्गत संग्रहालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा। सौंदर्यीकरण कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा इंटीरियर फिनिशिंग, सीसीटीवी सर्विलांस एवं सिक्योरिटी सिस्टम, आंतरिक एवं बाहरी प्रकाश व्यवस्था, साइनेज एवं ग्राफिक्स पैनल, ऑडियो विजुअल एवं इंटरैक्टिव सिस्टम, कंटेंट डेवलपमेंट सहित विविध कार्य कराए जाएंगे। परियोजना के लिए प्रथम चरण में 3 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण से कुशीनगर में बौद्ध विरासत को और बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी तथा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को आधुनिक एवं बेहतर संग्रहालय अनुभव प्राप्त होगा। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही लगातार वर्षा तथा भोटे कोसी त्रिशूली नदी में बढ़ते पानी और मलबा के बीच नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में नारायणी नदी उतार चढ़ाव के साथ बह रही है। हालांकि संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। जिले के खड्डा और तमकुही तहसील क्षेत्रों में दियारा और तटवर्ती गांव में विशेष चौकसी बरती जा रही है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों के लिए आपदा संबंधी सूचना व सहायता के लिए जिला मुख्यालय पर आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहाँ 24 घंटे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपदा कंट्रोल रूम का नंबर है 0556424590 तथा टोल फ्री नंबर है 1077। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कुशीनगर जिले में कृषि विभाग द्वारा समृद्धि की बात किसान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ एवं फसल सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा के लाभ, जोखिम से सुरक्षा तथा योजना की उपयोगिता के संबंध में जागरूक करना रहा। इस अवसर पर प्रगतिशील एवं सफल किसानों को फार्मर चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया। इन कृषकों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए अन्य किसानों को भी फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।
2: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सावन श्रीवास्तव का।
3: सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पीएम पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय और हर तहसील में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यरत रसोइयों को सम्मानित करते हुए उन्हें कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में पूरे जिले के तहसीलों पर पीएम पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा वितरण कार्यक्रम किया गया। जिले के करीब 6,000 रसोइयों को लाभ मिलेगा।
4: जो हमारे कर्मचारी है उनके नियुक्ति से लेके उनके पेंशन ग्रेच्युटी हर चीज का उनका वेलफेयर के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे और इसमें उनके और उनके परिवार के लिए 5 लाख तक मुफ्त इलाज का भी इसमें प्रोविजन है, तो ये बहुत अच्छा कदम है।
3: सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुंचने पर सिद्धार्थ नगर नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वह उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कपिलवस्तु में

0: स्थित बौद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो व सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में विपासना केंद्र बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। इन दोनों प्रोजेक्ट का निर्माण CSR फंड से किया गया, जिसकी लागत लगभग 12,82,00,000 रुपए है। इस अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, कपिल वस्तु विधायक श्यामधनी राही, कुलपति कविता शाह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कपिल वस्तु स्थित बौद्ध स्तूप पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन के प्रारंभिक 29 वर्ष यहाँ रहे और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यहाँ आए। इसी वजह से बौद्ध धर्म को मानने वाले देश विदेश के लोग यहाँ भारी संख्या में दर्शनार्थ आते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में जुटी हुई है। सिद्धार्थ नगर कलेक्ट्रेट परिसर में सावन के अंतिम सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा किया गया। सिद्धार्थ नगर जिले की मोहाना क्षेत्र थाने की पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक लिफ्टर को पकड़ने में सफलता पाई। ये बाइक लिफ्टर भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा ककरहवा बॉर्डर से पकड़ा गया। यह अभियुक्त भारत से बाइकों को मास्टर चाबी से नेपाल ले जाकर बेचने का कार्य करता था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 2 चोरी की बाइकें, एक मास्टर चाबी, एक फोन, नेपाली करेंसी बरामद हुई है। वही मीडिया से बात करते हुए ASP प्रशांत कुमार ने बताया कि यह लिफ्टर नेपाल राष्ट्र का निवासी है, जो कि भारत से बाइकों को चोरी कर नेपाल से ले जाकर बेचने का कार्य करता था। मोहाना थाना व सोरतगढ़ थाने में पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थ नगर जिले की मोहाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए सभी अभियुक्त मोहाना थाना क्षेत्र के बड़पुर नंबर 5 टोला छोटकी बेलहरी के निवासी हैं। 26 जून 2026 को मोहान थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहरी में 2 बच्चों के बीच मारपीट हुई थी। इसी मारपीट में जमाल अहमद पुत्र अकबर अली के सर में गंभीर चोटें आई थीं। घायल जमाल अहमद का इलाज लखनऊ के राम मनोहर अस्पताल में चल रहा था, जहां से वो ठीक होकर घर आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और उसे दोबारा भर्ती किया गया। इसी बीच इलाज के दौरान 28-29 अगस्त की रात में उसकी मौत हो गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: तो एक रिश्ता सा जुड़ जाता है खाने से।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही नंदिनी जी। वक्त के साथ खाने पकाने के अंदाज में भी बहुत तब्दीली आई है। रिवायती पकवानों से लेकर नए तजुर्बात और जदीद अंदाज पेशकश तक खाने की दुनिया मुसलसल बदल रही है। आपके ख्याल में इस बदलती हुई दुनिया में हमें अपनी रिवायती तरकीबों और अपने कदीम जायकों को किस तरह महफूज रखना चाहिए?
0: आप बहुत सही बोल रही हैं कि जो खाने की टेक्निक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, वो खाना कुक नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस जल्दी से रेडी टू ईट वाला फूड ले आए, घर ले आए और बस माइक्रोवेव करें और खा लें और पेट को शांति दें। लेकिन मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं औसतन 2015 से खाना तो कुक कर रही हूँ, मतलब जो मेरा व्यवसाय है या जो मेरा प्रोफेशन है, उससे पहले से भी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक था, अभी भी वो है, पैशन बरकरार है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी दादी नानियाँ, वो अपने पुराने तौर तरीकों से अभी भी खाना बनाती हैं और वो जो पुराना तौर तरीका है, पुराने टेक्निक्स हैं, पुराने ख्यालातों से जो खाना कुक होता है, खाना बनता है, वो असल में खाना वही होता है जो आजकल के चलन में जो हम खाना बना रहे हैं कि माइक्रोवेव कर लिया 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में या 2 मिनट में खाना बन गया। तो वो जो खाना 2 मिनट के बाद हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 5 मिनट बाद बाहर भी आ जाता है। तो आप सोचो कि वो हमारे शरीर को पोषण बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो चीजों को टाइम देकर पकाइए, क्योंकि टाइम देकर आप जो भी काम करेंगे वो एक अच्छा रिजल्ट देता है।
1: बिल्कुल दुरुस्त, नई चीजों को अपनाना भी जरूरी है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो खाना पकाने का शौक तो रखते हैं लेकिन बावर्ची खाने में कदम रखने से घबरा जाते हैं। तो आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगी जो अभी खाना पकाना सीखना शुरू कर रहे हैं?
0: मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूंगी, तो आपका शौक तो है खाना पकाना लेकिन आप किचन में नहीं जाना चाहते हैं
1: जी,
0: तो कृपा करके अपने कदमों को किचन से बाहर ही रखिए, क्योंकि किचन जो है एक ऐसी, कह सकते हैं एक ऐसा घर का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे खुशियाँ पकती हैं, जहाँ पे जज्बात पकते हैं, जहाँ पे रिश्ते पकते हैं। जैसे जब कोई फेस्टिवल होता है घर में, बहुत सारे लोग आते हैं, भाभी आ रही हैं, ननद आ रही हैं, या मम्मी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, सब मिलके कुछ ना कुछ पकाते हैं और बातें करते हैं, अपनी पुरानी बातें याद करते हैं और इसी दौरान चीजें पकती हैं और बहुत प्यार से पकती हैं। वहां पे कोई नाप तौल नहीं होता है कि इसमें 1 किलो आटे में इतना मोयन जाएगा या आलू में इतना नमक जाएगा, सब वहाँ पे अंदाजे से काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे काम तो हो रहा है लेकिन काम के बीच बातें भी हो रही हैं और वो प्यार भी बट रहा है एक दूसरे से, और जो पुरानी हमारी बचपन की यादें हैं वो भी ताजा हो रही हैं। बचपन में ऐसा होता था ना कि सब लोग मिलके खाना बनाते थे, लेकिन आज के टाइम में टाइम ही नहीं होता कि हम रिश्तेदारों के घर जाएं या वहां जा करके बैठ करके खाना बनाएं, लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जो सभी रिश्तों को जोड़ देता है। कुछ ना कुछ, चलो मैं आटा गूंद लेती हूँ, अच्छा मैं आलू छील देती हूँ, अच्छा मैं सब्जी काट देती हूँ, मैं धनिया काट देती हूँ, धीरे धीरे धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ जाती है और रिश्ते बंध जाते हैं। जो रिश्ते टूटे भी होते हैं वो आप एक अच्छा खाना कुक कर करके भी जोड़ सकते हैं। खाना बनाना एक कला है और खाना एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है कि हम खाने से अपने टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं और पुरानी यादों को भी ताजा कर सकते हैं।
1: आजकल मौसम में नमी और हब्स भी है और बारिशों का सिलसिला भी जारी है, ऐसे मौसम में खाने पीने के मामले में हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: आप बहुत सही कह रहे हो कि आजकल मॉनसून बहुत अच्छे जोरों शोरों पे है, बारिश हो रही है लगातार, और ये वाला जो मौसम है सबसे ज्यादा खतरनाक मौसम है बेसिकली अगर हम कहें, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनप जाते हैं। हम जिस किचन में काम करते हैं वहां पे नमी हमेशा रहती है, मकड़ी चींटी और कॉकरोच ये सारी चीजें, फफूंदी बहुत जल्दी लग जाती है, और भून के आजकल अगर कुछ भी चीजें छोड़ दो तो उनपे बहुत जल्दी से कीड़े उड़ने वाले आ जाते हैं
1: और वो खाने में बहुत जल्दी नमी आ जाती है
0: और खाना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, खराब हो जाता है, बासी बहुत जल्दी हो जाता है। तो खाना उतना ही कुक करें जितना हमें खाना है, बहुत ज्यादा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करें कि हल्का गर्म खाना ही खाएं इस मौसम में, ठंडा खाना मत खाएं, क्योंकि आजकल वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है, गले खराब हो रहे, खांसी हो रही है, तो खाना गर्म खाएं और चीजों का ख्याल रखें कि इस मौसम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करें क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और आप जितनी बार भी उसको धुलोगे तब भी वो जाते नहीं है। तो हरी सब्जियां जैसे पालक है, नारी का साग है और 2-3 तरह के साग आजकल मार्केट में आ रहे हैं, चौलाई वगैरह, उनको अवॉइड करें खाने से। अगर बहुत लगता है कि हाँ मन है खाने का तो बहुत अच्छे से उसको ला करके बहुत हल्के से गुनगुने पानी में वो डिप कर दे,

0: ताकि उसके जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए। फिर उसको प्रॉपर दो तीन बार धुल करके उस काटे और उसमें बढ़िया तड़का लगाइए लहसुन हरी मिर्च का, हींग का, और उसके बाद आप अपना साग बना सकते हैं। बाकी जिस किचन में आप काम करें, सेल्फ जो है वो बहुत जल्दी गंदा होता है, उसको अच्छे से गर्म पानी से साफ करें। जो कपड़े हम यूज करते हैं किचन टॉवल वगैरह, उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, तो गर्म पानी में अच्छे से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उसको डिप करके खौलाएं, उसके बाद उसको सुखा करके फिर इस्तेमाल करें।
1: यानी हाइजीन का बहुत ख्याल,
0: हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। और सबसे मेन, जहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं, जो स्पंज हम यूज करते हैं, उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो आपको दिखते भी नहीं, बहुत माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो स्पंज हम यूज करते हैं, उसको जब आप बर्तन धुल लें, उसको अच्छे से फिर गर्म पानी में डिप करके रख दें, ताकि जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर पनप रहे हैं वो मर जाए, और तब आप उसको दोबारा से सुखा करके नेक्स्ट बैच में उसको यूज करें। और बहुत सारी और भी चीजें हैं कि बारिश के मौसम में अनाज में कीड़े लग जाते हैं, चावल में घुन आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो चीनी नमी हो जाती है, नमक सील जाता है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे नमक में आप थोड़े से चावल डाल दोगे तो नमक जो सीलेगा नहीं, नमी नहीं खाएगा। चीनी में आप एक दो लौंग डाल दीजिए तो चींटियां नहीं लगेंगी। और तो आटा का जो आपका कनस्तर या डब्बा है उसके अंदर तेज पत्ते डाल दीजिए तो घुन नहीं आएंगे। इसी तरीके से चावल में भी आप तेज पत्ता डाल दोगे या नीम के कुछ पत्ते डाल दोगे तो घुन नहीं लगेंगे।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने। एक बात और है कि बरसात के मौसम में लोगों का दिल तली हुई चीज और चटपटी चीजें खाने का बहुत करता है, तो क्या इस मौसम में पकौड़े, समोसे और दूसरी तली हुई चीजें ज्यादा खाना मुनासिब है? और अगर नहीं है तो उन्हें सेहत बख्श बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए?
0: अब बारिश की बात होती तो बारिश का नाम सुनते ही चाय और पकोड़े सबसे पहले जहन में आता है। तो मतलब खा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं खा सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक अति होती है। अब ये नहीं कि आप हर दिन चाय पकोड़े ही खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार हो गया तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी सही और इजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आप मन भी भर जाएगा। और बाय चांस अगर आपको पकौड़े खाने भी, तो आजकल बहुत ट्रेंड चला है एयर फ्रायर का, बिना तेल के आप पकौड़े, सैंडविच, जो भी आप खाना चाहे सब बन सकता है उसके अंदर। तो वो वाला तरीका अपनाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा रोज ही पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिनके घर में एयर फ्रायर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे घर है, और मेरे ख्याल से एयर फ्रायर आज के मॉडर्न लोगों की एक उपज है, लेकिन ट्रेंड बन गया है। लेकिन एयर फ्रायर ठीक तो है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है और उतना खाना भी टाइमली बन के नहीं निकलता है। तो एयर फ्रायर की जगह पे आप स्टीम वाला खाना खाइए, बहुत ऑप्शंस है। पकौड़े भी आप अगर स्टीम करके भी खा सकते हैं, अगर नहीं ऑयल आप अवॉइड करना चाहते हैं तो स्टीम वाले खाइए। जैसे फरे, बहुत मैंने दो तीन बार बताए हुए, फरे आप बना के खा सकते हो स्टीम वाले। और बहुत सारी और भी चीजें, जैसे कि मेथी अभी थोड़े दिन बाद सीजन में आ जाएगी, मेथी की मुठिया है या लौकी की मुठिया है, लौकी की मुठिया जैसे कि बेसन है उसके अंदर आपने लौकी घिस के डाल दी, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, ये सब डाल करके अच्छे से एक सॉफ्ट आटा गूंध लिया और फिर उसके लंबे लंबे से मुठिया टाइप में बना करके और स्टीम कर दिया। फिर उसको कट करके और हल्के से तेल में आपने जीरे का तड़का और राई और कड़ी पत्ता डाल करके और वो मुठिया कट करके डाल दी।
1: ये ऑप्शनल है, तेल में हम डालें या हम उसको ऐसे ही खा लें।
0: आप एक चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो। अगर आप तेल भी नहीं डालना चाहते तो नॉनस्टिक पैन में या ऐसे ही हल्का सा तड़का लगा करके, मतलब वो तेल ना के बराबर ही होगा एक चम्मच, ताकि वो तड़के का फ्लेवर भी आ जाए और वो अच्छे से बढ़िया से क्रंची भी हो जाए। आजकल घुइया के पत्ते बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, ट्रेंड में क्या मौसम में है।
1: अच्छा।
0: तो आप इस तरीके से घुइया के पत्तों के साथ भी कर सकते हैं। घुइया के पत्ते लाइए, उसके जो मोटे मोटे डंठल वो निकाल करके उसको आप बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और उसके बाद उसको बेसन में मिला करके सेम प्रोसेस ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक बेसन का लेप बनता है जिसमें बेसन होता है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और थोड़ी सी इमली। इमली इसलिए जरूरी है क्योंकि जो घुइया का पत्ता होता है वो पकने के बाद भी उसमें कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके गले में खराश करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उससे बचने के लिए आप उसमें थोड़ी सी इमली जरूर डालें, कुछ खट्टा डालें जिससे आपके गले में खराश ना हो। तो आपने ये वाला पेस्ट बना लिया और उसके बाद पत्तों पे लगा लगा करके 4-5-6-7 पत्ते एक के ऊपर और उसके बाद उसको रोल करके उसको स्टीम कर लीजिए और फिर उसको कट करके और फिर सेम तड़का आपने राई और थोड़ा सफेद तिल हो गया, जीरा हो गया, चाट मसाला, नमक डाल करके ये बढ़िया, ये भी चाय के साथ खाने वाला एक इजी स्नैक्स है और हेल्दी भी है।
1: बहुत अच्छे अच्छे आपने टिप्स दिए, पकौड़ों के ऑप्शंस दिए आपने हमारे सामीन को। अब चाय और कॉफी के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए भी एक सवाल बनता है कि क्या हब्स और गर्मी के इस मौसम में, इस मानसून के सीजन में चाय या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल मुनासिब है? और अगर ऐसा हम ना करें तो उसके बेस्ट या बेहतर ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं?
0: चाय तो वैसे अगर

0: एक कप हम दिन में पी रहे हैं पूरे दिन भर में, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, और एक से ज्यादा पी रहे हैं तो वो शायद फायदेमंद नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं 4-5 कप चाय पीते ही पीते हैं दिन भर में,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: आप उस चाय को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कभी आपने नींबू वाली चाय पी ली, वो आपके गले के लिए भी अच्छी है, और कभी आपने काढ़ा पी लिया, क्योंकि मौसम को देखते हुए कि आपके शरीर को थोड़ी सी गर्माहट भी देगी और खराश भी नहीं आएगी, तो आप मसाले वाली चाय भी पी सकते हैं। और अदरक अदरक इलायची और काली मिर्च का भरपूर इस्तेमाल करिए। भरपूर इन द सेंस नहीं कि बहुत मात्रा में डालना, लेकिन आप चाय में डाल सकते हैं, जिससे कि गले की खराश तो खत्म होगी होगी, लेकिन आपके शरीर को थोड़ी सी गर्मी भी देगी।
1: नंदिनी जी, बरसात के मौसम में भुट्टे का जिक्र ना हो तो मौसम अधूरा सा लगता है। भुने हुए भुट्टे की खुशबू ही भूख बढ़ा देती है। लेकिन क्या आप हमें बताएंगी कि भुट्टे से रिवायती अंदाज के अलावा और कौन कौन सी दिलचस्प डिशेस तैयार की जा सकती हैं?
0: भुट्टे से तो हम अनगिनत रेसिपीज बना सकते हैं, और मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आपने कभी आई थॉट सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। जो भुट्टा है उसमें पूरा भुट्टा यूज हो जाएगा। भुट्टा ले आइए मार्केट में, आजकल फ्रेश कच्चे बढ़िया दूधिया भुट्टे मिल रहे हैं। भुट्टे का जो छिलका उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं।
1: वाह,
0: तो क्या करना है कि भुट्टे के जो दाने हैं आप उसको चाकू से निकाल लीजिए बढ़िया से, उसके बाद उसमें जो उसके धागे हैं वो निकाल के साफ कर लीजिए बढ़िया, फिर उसको पीस लीजिए मिक्सी में, और फिर उसमें डाल दीजिए सूजी, नमक और थोड़ी सी अदरक और धनिया पत्ता, और अगर आपको और कोई सब्जियां उसमें ऐड करनी है तो वो भी डाल सकते हैं। आपका एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा, जैसे हम बना रहे हैं भुट्टे की इडली। तो अब क्या करना है, जो आपका पेस्ट बन गया बढ़िया सा, अब उसमें आप थोड़ा सा इनो डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लिए। जो आपके भुट्टे के छिलके हैं उन पे वो पेस्ट रख करके उसको बढ़िया से पैकेट बना लीजिए, और उसको फिर स्टीम कर दीजिए एक एक रख करके, तो बढ़िया से आपकी भुट्टे वाली इडली बन गई। आप उसको एज इट इज ऐसे भी खा सकते हो, और अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप नारियल की चटनी बना लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट आएगा।
1: बहुत उम्दा, सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया।
0: और भुट्टे का मतलब कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम,
1: हाँ,
0: तो भुट्टा भुट्टों के छिलकों
1: काफी इस्तेमाल हो गया। अब त्योहारों का मौसम भी करीब आ रहा है। त्योहार और खाने का तो एक बहुत गहरा ताल्लुक है।
0: हाँ, और खाने के बिना त्योहार का मजा ही नहीं,
1: मजा ही नहीं है। तो त्योहारों के मौके पर घर में तरह तरह के पकवान भी बनते हैं, मिठाइयाँ भी खूब खाई जाती हैं। ऐसे में नंदिनी जी, जायका और सेहत के दरमियान एक तवाजुन, एक बैलेंस कैसे कायम रखा जाए?
0: जब फेस्टिवल्स आता है तो हम बहुत ज्यादा खुश तो होते ही हैं, क्योंकि चारों तरफ एक खुशी वाला माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है, हर कोई खुश होता है, और इस खुशी खुशी में हम ज्यादा भी खा लेते हैं। ये तो आम बात है, क्योंकि दोस्त यार सारे लोग मिलते हैं, फैमिली रिलेटिव सारे लोग मिलते हैं, तो इस खुशी खुशी में हम ज्यादा खा लेते हैं। तो आपको उस ज्यादा खाने से बचना है, और हेल्दी भी खाना है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बाजार में आजकल जो दौर चल रहा है कि नकली खोया चल रहा है, मिठाइयां हैं वो बहुत ज्यादा, उसमें शुगर इतना ज्यादा है कि वो आपके हेल्थ के लिए नहीं अच्छी है। तो कोशिश करिए कि घर पे ही मिठाइयाँ बनाएं, और ये पहले भी बनती थी, हमारी मम्मी दादी नानियाँ पहले बनाती थी, मलाई के पेड़े या पेड़ा बनाती थी, बर्फी बनाती थी, लड्डू बनाती थी, बेसन के बहुत सारी चीजें बनाती थी। अब तो तरह तरह की मिठाइयाँ बाजार में आ गई हैं, पनीर भी आजकल नकली आ रहा है, तो कोशिश करिए कि घर का ही बना हुआ पनीर इस्तेमाल करें। तो अगर आप घर का खाना और अपने सामने बना हुआ खाना खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको कभी हार्मफुल नहीं होगा। तो कोशिश करें घर का खाना खाएं, और बहुत मसालों वाला खाना मत खाएं। फेस्टिवल्स होते तो मिठाइयां होती, मीठा मीठा, तो कोशिश करिए कि मिठाइयां जो है वो दिन में खा लें, ताकि आप अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो चल चल के कैलोरीज बर्न कर लें और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। रात में भारी खाने से बचें, और दिन में जो भी जितना एंजॉय करना है खाइए, और जंक फूड खाने से बचें।
1: जंक फूड का आपने नाम लिया, मुझे इस पे एक अच्छी बात भी याद आई कि आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, क्या बच्चे क्या बड़े सभी लोग, तो इनका कोई मुझे बेहतर ऑप्शन दीजिए जिससे कि हम जंक फूड को रिप्लेस कर सकें हेल्दी फूड के साथ।
0: बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जंक फूड में बच्चे मोमोज बड़ा खाते हैं।
1: जी, ये है तो बहुत ट्रेंड में है भाई।
0: तो मोमोज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन अगर आप बोलोगे कि हेल्दी मोमोज की शुरुआत किसने करी थी, तो मैंने करी थी। 2012 की बात है, और एक कोई इवेंट था तो वहाँ पे बनाना था नवरात्रि के लिए मोमोज। यू कैन इमेजिन, नवरात्रि के लिए कोई मोमोज बना सकता है?
1: बहुत आपने इनोवेशन वाला काम किया।
0: इनोवेशन वाला काम था। तो मैंने कुट्टू के आटे से मोमोज बनाए थे। कुट्टू या सिंघाड़े का आटा जो हम व्रत में खाते हैं, हम उससे मोमोज बना सकते हैं। तो आप सोचो कि वो वाले मोमोज हमारे जो शहर की जानी मानी हस्ती हैं मास्टर शेफ पंकज भदौरिया, उन्होंने मुझे बेस्ट इनोवेशन का प्राइज भी दिया था।
1: अरे वाह, तो आज हमारे सामीन को भी वो आप बताएं, जरूर बताएं। हाँ, हेल्दी ऑप्शन होगा,
0: बहुत हेल्दी ऑप्शन है, उसमें सारी हेल्दी चीजें गई हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि साबूदाना को आप भिगो दें अच्छे से, कम 4-5 घंटे

0: लिया, उसके बाद उसको पीस लिया सिलबट्टे पे, ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर एक आटा बन जाए।
1: और अगर सिलबट्टा ना हो मिक्सी भी चलेगा?
0: हाँ चलेगा, लेकिन सिलबट्टे भी पीसेंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। और
1: ओके
0: सिलबट्टा ले ही लें, क्योंकि बाजार में सिलबट्टा आपको हर जगह मिल जाएगा,
1: हाँ
0: और
1: ये है
0: सिलबट्टे
1: तो
0: का जो टेस्ट है वो आपकी मिक्सी में कभी नहीं आएगा। मैं हूँ आज के समय की, लेकिन मेरे ख्यालात वही पुराने वाले हैं कि मुझे खलबट्टे में कूटना, सिलबट्टे में पीसना, मुझे वो सब पसंद है, क्योंकि उनसे जो एक तो आपका रिश्ता बन जाता है अच्छा, और जो खाने का टेस्ट है वो बढ़ करके अच्छे से निकल करके आता है। तो सिलबट्टे में पीसिए, उसके बाद जो आपने पेस्ट साबुदाने का तैयार किया उसमें आप सिंघाड़े का आटा या डाल सकती हैं, या आप कुट्टू का आटा, अच्छा सा एक आपका डो बन जाएगा जो कि आपके मैदे को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे साबुदाना है और कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का
1: बिल्कुल
0: आटा,
1: जी
0: तो आपका एक डो बन गया आटा। फिर आप फिलिंग के लिए गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पनीर हो गया, जो भी आपको सब्जियां, पत्ता गोभी अगर आप खाना चाहें तो वो वाली फिलिंग आप बना लीजिए, नमक काली मिर्च और ये सब डाल करके, और उसके बाद फिलिंग को भर करके आप मोमोज का शेप दीजिए और स्टीम करिए, और टमाटर वाली चटनी के साथ खाइए,
1: कितना
0: मजा ही आ
1: अच्छा
0: गए,
1: ऑप्शन है
0: है
1: ये।
0: ना। आजकल बहुत सारे मार्केट में भी हेल्दी मोमोज के ऑप्शन, आप इवन बाजरे के आटे से भी बना सकते हैं, या आप मिलेट्स का आटा आता है उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन आटों का यूज करें, ये ख्याल रखें कि इन आटों को ठंडे पानी से नहीं गूंदना, हल्के गर्म पानी से गूंदना है। इससे क्या होगा कि जो आटे में ना बिल्कुल एक ग्लूटन लेस आ जाएगी, वो टूटेगा नहीं। अगर आप ठंडे पानी से गूंदोगे तो आटा टूट जाएगा।
1: नंदिनी जी, अब जरा गुफ्तगू में थोड़ी सी चटखारादारी शामिल करते हैं। एक मुख्तसर सा रैपिड फायर होगा, तो शुरू करते हैं। सबसे पसंदीदा खाना?
0: बिरयानी।
1: मीठा या नमकीन?
0: नमकीन।
1: चाय या कॉफी?
0: चाय।
1: घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना?
0: वैसे तो रेस्टोरेंट का खाना तो मैं खा खा के ऊब चुकी हूँ, क्योंकि मैं खुद ही रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ, लेकिन घर का खाना ऑलवेज, कभी भी आओ लेकिन घर का खाना, दाल चावल सबसे बेस्ट।
1: एक ऐसी डिश जिसे बनाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है?
0: अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो मुझे लजानिया बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है।
1: अगर सिर्फ एक मसाला इस्तेमाल करना हो तो वो कौन सा होगा?
0: इलायची, जहाँ जाइए खुशबू बिखेरिए।
1: वाह क्या बात। सामेईन, आज की गुफ्तगू में हमने सिर्फ जायकों की बात नहीं की, बल्कि ये भी जानने की कोशिश की कि हमारी रोजमर्रा की गिजा किस तरह हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती है। शेफ नंदिनी दिवाकर के साथ होने वाली इस खूबसूरत गुफ्तगु ने हमें ये याद दिलाया कि खाने में लज्जत जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सेहत, सफाई और एतदाल का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। नंदिनी जी, जायका एक्सप्रेस में हमारे साथ वक्त गुजारने, अपनी कीमती मालूमात और तजुर्बात हमारे सामईन तक पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: उम्मीद है कि आपकी बताई हुई बातें हमारे सामईन के दस्तरखान पर जायके के साथ सेहत की खुशबू भी बिखेरती रहेंगी। तो सामईन, याद रखिए, अच्छा खाना वही नहीं जो सिर्फ जबान को भाए, बल्कि अच्छा खाना वो है जो जिस्म को तवानाई, दिल को खुशी और अपनों के साथ बैठने के खूबसूरत लम्हों को यादगार बना दे। इसी जायके, इसी खुशबू और इसी अपनाइत के साथ आज के जायका एक्सप्रेस से मुझे, आपकी मेजबान शाज़िया खान को इजाजत दीजिए। आदा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। साथ ही आप हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मीरा तिवारी, उनके स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थी मीरा तिवारी। अब हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़, और आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप भी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 10 बजने को है अब हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पट्टी की है।
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।

0: है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआ और बिनोती ज्वारिज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज इस कार्यक्रम में सुनिए PCOS एक जानकारी विषय पर डॉक्टर ऋचा पांडे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत।
2: श्रोतो नमस्कार। आज हम एक विशेष विषय लेकर के आए हैं, एक खास सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जिस पर हम बात करेंगे और उसका नाम है PCOS। ये क्या होता है, किसको होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या उपचार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। और इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट प्रयागराज की डॉक्टर ऋचा पांडे को। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद। आज का विषय पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है महिलाओं में और यंग लड़कियों में, टीनेजर्स में। वैसे तो इसको अब नया नाम दिया गया है, इसको PMOS यानी कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिसमें चूंकि इसमें बहुत सारी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जो कि सिर्फ हार्मोन, सिर्फ सेक्स हार्मोन को ही नहीं इन्वॉल्व करता, ये साथ में इंसुलिन अथवा और भी जो हार्मोन्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए इसको, और इसका हमारे पूरे शरीर पे भविष्य में भी आगे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, हाई ब्लड प्रेशर, इवन फर्दर ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है। इसलिए इसको पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम दिया गया है, ताकि इसको समझा जा सके कि ये सिर्फ ओवेरियन सिस्ट तक ही सीमित नहीं है, कि ये सिर्फ

0: एक्सपीरियंसेस ही नहीं कॉज करेगा, ये शरीर में हर जगह हर लेवल पे कहीं ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। और इसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ एक उससे लिंक्ड नहीं है, इसके अंदर हमको पूरी तरह से काफी सारी जगहों पे काम करते हुए ट्रीटमेंट करना है, सिर्फ दवाई से नहीं कि जैसे बुखार है तो हमने क्रोसिन दे दी ठीक हो जाएगा। इसका मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम द पेशेंट इज शोइंग। जैसे कि टीनेजर्स हैं तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, अगर वो शादी हो चुकी है तो फिर वो आएंगी अक्सर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ भी और फर्टिलिटी के साथ भी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, और भविष्य में आगे वो आ सकती हैं कि डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ रहा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके साथ वक्त वक्त पे जुड़ी हुई हैं। तो टेलर्ड अप्रोच है, मरीज को देखते हुए उसके साथ अप्रोच करना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं।
1: जी डॉक्टर ऋचा, हम अपनी बातचीत में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: जो मामले देखने में आ रहे हैं, ये युवतियों में देखने में आ रहे हैं, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल की जो लड़कियां हैं। एक समय ऐसा कहा जाता था कि 40 से ऊपर या 45 से ऊपर जो महिलाएं हैं, आमतौर पर ये अमूमन उनको हुआ करता था। ऐसा क्या कारण है कि आजकल इतने ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं?
1: पहली चीज़ तो डायग्नोसिस की इम्प्रूवमेंट, अल्ट्रासाउंड के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इसको जान तो लिया गया था 1968 में, स्टीन लेवेंथाल सिंड्रोम के नाम से इसको रखा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना ये इसका इतिहास है। लेकिन उस टाइम पे ये पाया गया था कि लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, थिक बॉडी हेयर है, तो उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, और इनफर्टिलिटी के साथ। फिर धीरे धीरे इसमें चीज़ें और बेहतर होती गई। अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अब आप देख रहे होंगे हर जगह उपलब्ध है, तो
0: जी
1: इसलिए इसकी डायग्नोसिस और ज़्यादा बढ़ती गई, और वक्त के साथ लड़कियां भी अब अप्रोच करती हैं, आती हैं, तो इसलिए अब लोग चीज़ें छुपाते नहीं हैं। अस्पतालों में हर जगह अवेलेबिलिटी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मामले अब देखे जा रहे हैं। कुछ ये भी है कि साउथ ईस्ट
0: जी
1: एशिया में ये थोड़ा सा कॉमन भी है, थोड़ा सा ज़्यादा है बजाय विश्व के और जगहों पर।
0: कारण डॉक्टर साहब क्या हो सकता है इतनी तेजी से इसके बढ़ने के या फैलने के?
1: एक तो हमारी लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसका जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट भी है। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, कुछ इसका जेनेटिक आधार भी है, ये देखा गया है कि इसका एक्स लिंक्ड आधार भी है, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस वगैरह में देखा गया है कि ये ज़्यादा कॉमन है, तो कहीं ना कहीं है तो जेनेटिक भी इसका। दूसरी चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि ओवरवेट होना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल रहना, ये सब हैं जो एडजुवेंट फैक्टर हैं जो इसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर से आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक है,
0: जी
1: जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे 13-14 साल से लड़कियां हैं, ये खाना खाने के लिए कि जंक फूड, मोस्टली ओपीडी में सबसे बड़ी क्या कंप्लेन होती है पेरेंट्स की कि बच्चा जो है वो घर का कुछ नहीं खाना चाहता, बच्चे बाहर का खाना चाहते हैं। और इसका जो पहला लाइन ट्रीटमेंट का है कि पैकेट का आप ना खाएं, मतलब आप जंक ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं, EDCs हैं, जो कि हार्मोन को मिमिक करते हैं, और कहीं ना कहीं जो पैकेट का प्रोसेस्ड फूड है उसमें, पैकिंग में, ट्रांसपोर्ट में, कहीं ना कहीं वो हमारे खाने में आते ही हैं, कहीं ना कहीं उनका लीच है ही
0: जी
1: आपके खाने में। तो आप चाहे जितना कॉशियस रहें, वो आपके शरीर में जाएंगे ही, और फिर उसके बाद आपको उसके अंदर हार्मोनल बदलाव देखने को मिलेंगे। ओवरवेट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बेली फैट इसके साथ बहुत एसोसिएटेड है, तो
0: जी
1: थोड़ी भी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसका कोई इलाज नहीं है कि हमने गोली दी और ठीक हो गया,
0: जी
1: इसके अंदर मरीज़ को भी उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है।
0: जी डॉक्टर ऋचा, बातें तो और भी होती रहेंगी, लेकिन इन जानकारियों के बीच में माहौल को थोड़ा सा संगीतमय बनाते हैं और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: लक्षण शुरुआती क्या होते हैं डॉक्टर एचआईएस के?
1: शुरुआती लक्षण तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मेलिटी रहेगी, जैसे कि मरीज़ को अक्सर लड़कियां जो कंप्लेन करती हैं कि महीना चढ़ के आना, कम
0: जी
1: होना, ना आना, चार चार पाँच पाँच छः छः महीने तक ना आना, तो ये सबसे पहला इसका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। कुछ लोग तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये भी है एक की बात की ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि अभी हमको कौन सा कुछ करना है, नहीं आ रहे पीरियड तो ना आए।
0: जो ये इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो मासिक धर्म का अनियमित तो चक्र है, क्या अगर किसी को ये समस्या है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि उसे पीसीओएस हो ही गया है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। थायराइड
0: जी
1: डिसऑर्डर हो सकता है, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया हो सकता है, बहुत सारे और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसकी। लेकिन जैसे मरीज़ आता है तो हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं कि पीरियड किस तरह से आते हैं। 21 से 35 दिन अगर गैप है तो वो एक नॉर्मल है, अगर उससे कम या उससे ज़्यादा है तो फिर हमको उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम पहले थायराइड की स्क्रीनिंग, प्रोलैक्टिन की स्क्रीनिंग, ये सब कराते हैं ताकि ये देखा जा सके कि मरीज़ को और चीज़ें तो नहीं है एसोसिएटेड। दूसरा, ओवरवेट थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इसकी तरफ जाता है, और बाकी अल्ट्रासाउंड जो है अगर उसके अंदर ओवरी सिस्टिक मिल रही हैं तो ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है
0: जी
1: जिसमें पर्ल ऑफ नेकलेस अपियरेंस वगैरह दिखता है।
0: कई बार इसके लक्षणों में चेहरे पर जो अनचाहे अतिरिक्त बाल आ जाते
1: हाँ
0: हैं बहुत
1: जी
0: ज़्यादा, ये भी शामिल
1: हाँ,
0: है?
1: हिर्सुटिज्म तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि मरीज़ अक्सर एक्ने, ऑयली स्किन, एक्ने, हिर्सुटिज्म कि हमारे चेहरे पे अनावश्यक बाल आ रहे हैं,
0: जी
1: और इसी के साथ साथ कि पेट पे भी बाल आना, निपल्स के अराउंड बाल आना, तो ये सारे हिर्सुटिज्म के फीचर इसके अंदर रहते हैं। तो इन्हीं सबसे हम इसको डायग्नोस करते हैं कि हाँ पेशेंट ये पीसीओ की तरफ जा रहा
0: जी
1: है।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़्यादा वज़न होने की बात की, तो पीसीओएस की वजह से वज़न बढ़ता है या वज़न ज़्यादा होने की वजह से पीसीओएस होता है?
1: अगर वजन ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं पीसीओएस की तरफ मरीज़ को ज़्यादा धक्का मारता है, धकेलता है कि हाँ ये अब पीसीओएस की तरफ जा सकता है। और अगर पीसीओएस है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तब भी वो ओवरवेट
0: जी
1: का कारण बनता है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
0: यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस ये किस तरह से आपस में संबंधित है?
1: इंसुलिन रेजिस्टेंस चूंकि ओवरवेट हो जाता है और ये एक इन्फ्लेमेटरी, हम कह सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है पीसीओएस।

0: इसमें, तो इसलिए इंसुलिन बढ़ती तो है परंतु इंसुलिन जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। इसलिए एक्सरसाइज की तरफ कहा गया है कि एक्सरसाइज हो, थोड़ा मसल मास इम्प्रूव हो, प्रोटीन रिच डाइट हो, जिससे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बने और इंसुलिन आपका यूज़ हो, वरना यही इंसुलिन फिर ओवरीज को ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजन्स रिलीज कराता है। एंड्रोजन्स रिलीज होंगे तो फिर एनओविलेशन में जाएंगे और फिर हिर्सुटिज्म की तरफ जाएंगे। तो इन सबको रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ये पूरी विशेष साइकिल रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ईटिंग, कि कैसे आप खा रहे हो, और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप एक्सरसाइज करें।
1: इसके लिए आप कौन सी जांचें करती हैं?
0: इसके लिए देखिए, बहुत वैसे तो अगर ज़रूरत ना हो तो हमको बहुत ज़्यादा जांच कराने की ज़रूरत इसमें नहीं है, लेकिन चूंकि अगर हम इनफर्टिलिटी या और चीज़ों का ट्रीटमेंट का देखते हैं तो हम पीसीओ प्रोफाइल एक कराते हैं, जिसके अंदर एलएच एफएसएच उसका रेशियो कैसा है, 3:1 से ज़्यादा तो नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारे एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्ट्रॉन है, एंड्रोस्टिनिडाइन है, इन सब की जांच, थायरॉयड प्रोलैक्टिन तो हम एक स्क्रीनिंग के लिए करते ही हैं, इन सब जांचों की हमको आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम फर्टिलिटी की तरफ देखें तो हमको एएमएच की ज़रूरत है, जानने के लिए कि वो कितना है कितना नहीं है। उसके हिसाब से ओविलेशन ड्रग्स दी जाती हैं, जो हमारी मैरिड इनफर्टाइल फीमेल्स हैं उनको हम फिर ओविलेशन इंडक्शन के लिए बताते हैं पहले, तो क्योंकि इनके अंदर ओवरीज जो होती है वो हाइपर एक्टिव होती हैं, तो उनको नॉर्मल लाने के लिए पहले हम कुछ कॉन्ट्रासेप्शन भी देते हैं, फिर उसके बाद इनको ओविलेशन इंडक्शन ड्रग से, अगर ओविलेशन इंडक्शन ड्रग इतनी नहीं हो रही है कारगर, तो फिर मरीज को एक ओविलेशन ड्रिलिंग प्रोसीजर है वो किया जाता है, और अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिर कभी कभी पेशेंट को आईवीएफ में भी
1: जी
0: जाना
1: डॉक्टर
0: पड़ता है।
1: ऋचा, मैं दो प्रश्न एक साथ जोड़ करके पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न तो ये है कि जो एक हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जो हार्मोनल असंतुलन होता है, और पीसीओएस, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं या अलग-अलग हैं? दूसरा ये कि किस हद तक ये खतरनाक हो सकता है? सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी महिला को, लड़की को पीसीओएस है, तो सबसे ज़्यादा ये किस रूप में खतरनाक होकर के सामने आ सकता है?
0: देखिए, अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस तो इसमें है ही, जो कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ सेक्स हार्मोन तक सीमित नहीं है, ये आपका इम्बैलेंस इंसुलिन को भी लेके है, तो इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो पूरा इसमें किसी भी हद तक देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मरीज़ में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तक कॉज कर सकता है, जो कि
1: गर्भाशय का
0: हाँ
1: कैंसर
0: जी गर्भाशय का कैंसर है, तो वो
1: जी
0: एक काफ़ी सीरियस वो है। बाकी इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके बाद भी उसमें मिसकैरेज के चांसेस, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये सारी दिक्कतें जिसकी वजह से हार्ट की परेशानियां हो सकती हैं, तो एक तरह से आपके लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है।
1: बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं इसलिए भी भयभीत रहती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक बार उनको अगर पीसीओएस हो गया तो ये एक तरह से बांझपन की शुरुआत होती है। ऐसा है क्या?
0: नहीं, ये तो एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि अगर पीसीओ के पेशेंट हैं तो बच्चे नहीं हो पाएंगे, ये एक बहुत ही गलत लोगों के अंदर फैला हुआ है मन में, ये गलत बात है। लेकिन हम अगर आगे आएंगे और सही समय पे अस्पताल जाएंगे और अपने खान पीन का संतुलन बना के रखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, और साथ में हम कुछ ना कुछ व्यायाम करेंगे, तो बहुत कारगर साबित होगा ये, और हमको बहुत सारी इसकी जटिलताओं से हमको बचा सकता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज में डॉक्टर ऋचा पांडे से की गई बातचीत का पहला भाग। वॉइस ऑफ प्रयागराज के अगले अंक में हम सुनवाएंगे आपको इस साक्षात्कार का दूसरा भाग। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं हरिश्चंद्र पांडे और विनीता तिवारी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं हरिश्चंद्र पांडे और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

हमार जननी हो कहाँ, हर रहिया भुलानू

0: अभी आप विनीता तिवारी के स्वर में ये कहरवा गीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के नगमों का सफ़र तय करेंगे जिनकी कलम ने हिंदी सिनेमा को सादगी, रोमानियत और चंचलता के नए आयाम दिए। एक ऐसा गीतकार जिसने इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा जैसे गंभीर रोमानियत भी लिखी तो ईना मीना डीका जैसे मस्त मौला मस्ती भी रची। जी हाँ, आज की हमारी ये खास पेशकश समर्पित है महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी को।

0: श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी को बचपन से ही शेर व शायरी का शौक था। लाहौर से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद वो मुंबई आए और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर मूड के गीत बड़ी आसानी से लिख लेते थे, चाहे सी रामचंद के साथ रॉक एंड रोल हो, मदन मोहन के साथ गजलें हो या आर डी बर्मन के साथ चुलबुले गीत। राजेंद्र कृष्ण जी हर रंग में ढल जाते थे। आइए अब सुनते हैं उनका लिखा एक ऐसा ही चुलबुला और सदाबहार गीत जिसे सी रामचंद जी ने संगीतबद्ध किया था।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

श्रोताओं, जब भी राजेंद्र कृष्ण जी का जिक्र होता है तो संगीतकार मदन मोहन जी के साथ उनकी जोड़ी की बात किए बिना ये सफर अधूरा रहेगा। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर भारतीय सिनेमा को ऐसी ऐसी गजलें और नज्म दी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। फिल्म अदालत हो या अनपढ़, इनकी जोड़ी ने लता मंगेशकर जी की आवाज के साथ मिलकर जादू बिखेरा। आइए अब आपको ले चलते हैं उसी खूबसूरत और गंभीर रोमानियत की दुनिया में,

श्रोताओं, दिल को छू लेने वाली ये गजल राजेंद्र कृष्ण जी के लेखन की गहराई को दर्शाती है। लेकिन राजेंद्र कृष्ण जी सिर्फ संजीदा गीत नहीं लिखते थे, हास्य और मस्ती भरे गीतों में भी उनका कोई सानी नहीं था। सन 1968 में आई फिल्म पड़ोसन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आर डी बर्मन के संगीत के साथ किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की जुगलबंदी पर राजेंद्र जी के शब्दों ने जो रंग जमाया उसने इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का वो अमर गीत जो आज भी हर पीढ़ी का पसंदीदा है।

ஐயோ தம் தம் ரோக்.

ಮೇರೆ ಮನ್ ಕೇ ದ್ವಾರ ಕೇ ಭೂತ ಜಾತ ಹಮ ಮದತ ಜಾತ.

0: agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora,
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये भूतत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत

श्रोताओ, क्या ऊर्जा है इस गीत में। शब्दों का खेल, हास्य और सुरों की जुगलबंदी, यही तो पहचान थी राजेंद्र कृष्ण जी की। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों सुपरहिट गीत लिखे। वो सिर्फ एक सफल गीतकार ही नहीं बल्कि एक मशहूर पटकथा और संवाद लेखक भी थे। उनकी रचनाएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत सुन रहे थे और अब वंदना श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए पहला गीत फिल्म आशिकी 2 से। गीत संगीत मिथुन के और आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

अब सुनिए फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर की आवाज़ में। गाने के बोल इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का।

अगला गीत है फिल्म चक दे इंडिया से बोल जयदीप साहनी के, संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने और गाया है हेमा सरदेसाई ने।

और अब विभास के संगीत निर्देशन में सुनिए अमरेंद्र कुमार की रचना। फिल्म का नाम है मिलेंगे मिलेंगे और गायक कलाकार हैं सोनू निगम।

अजनबी में सुनिए सुनिधि चौहान को। संगीतकार हैं अनु मलिक, बोल हैं समीर अंजान के।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मीका सिंह को। फिल्म ओ माई गॉड में बोल हैं शबीब अहमद और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया के।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: लेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेट्रू की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेट्रू की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे गुरु प्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पसंद सुनिएगा दिन में 12:30 पर।

दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें संस्कृति द्विवेदी की वार्ता सुनेंगी, फैशन टेक्नोलॉजी में करियर की संभावनाएं, और निखार के अंतर्गत जानेंगी राइस वाटर एक मैजिकल ब्यूटी इंग्रेडिएंट। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर।

बच्चे नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5 बजे। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता प्रसारित की जाएगी, समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगे आशुतोष श्रीवास्तव।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए गुरु प्रसाद शर्मा का वॉयलिन वादन। प्रस्तुत है वॉयलिन पर राग शुद्ध सारंग। कलाकार हैं गुरु प्रसाद शर्मा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप कुमार चक्रवर्ती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गुरु प्रसाद शर्मा से वॉयलिन पर राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संदीप कुमार चक्रवर्ती। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। इस धरती पर सबसे सस्ती दवा है व्यस्तता, जो बड़े बड़े दुखों को भी कुछ पल के लिए कम कर देती है। जब मन में उठते हैं यादों के अनगिनत तूफान, तो उसको काम की छोटी सी आहट भी थाम लेती है। बात बिल्कुल सही है। जब हम बहुत दुख में होते हैं, ऐसे समय में अगर हम अपने को व्यस्त कर लें, तो हमारा सारा ध्यान उस काम की ओर चला जाता है और जो दुखों का सैलाब मन में आया है, वो थोड़ी देर के लिए थम सा जाता है। तो ये एक दवा का काम करती है। शायद इसलिए हर दर्द का इलाज उसे भूल जाना नहीं होता। कभी कभी खुद को ऐसे कामों में बिजी कर लेना भी होता है जो हमारा एक सही उपचार होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है फकीरा। और इस गीत की फरमाइश हमें की है गुजरात से धीरज पी रवारी, सचिन और संजय। पुलिस लाइन प्रयागराज से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, बाला कनौजिया, हनी कनौजिया और गौरी कनौजिया। हंडिया से प्रेमचंद्र, महेंद्र यादव, रेखा यादव, आयुष और अनन्या। हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरुकीरत और गुरु

दोस्तों, उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जो हमें ये सिखा देता है कि कभी कभी सुकून किसी के साथ होने में नहीं, बल्कि खुद के साथ खामोशी से बैठने में होता है। और ऐसे में ना कोई सवाल होता है, ना ही कोई शिकायत होती है, बस दिल होता है और उसकी अपनी सी खामोशी। तो अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। और गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है संघर्ष, आवाज सोनू निगम की, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। दादनपुर प्रयागराज से विकास, नीतीश आर्य और इनके बहुत सारे मित्र, मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, श्री जी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, मुस्कान, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस जंघैल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का संघर्ष फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, कभी आपने प्रकृति को ध्यान से देखा है? जंगल में कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ से ऊंचा होने की कोशिश नहीं करता, फिर भी सब आसमान तक पहुंच जाते हैं। कोई किसी की छांव को अपने नाम नहीं करता, फिर भी हर राहगीर को सुकून मिलता है उनकी छांव में बैठकर। हवा आती है, कुछ पत्ते गिराती है, लेकिन जंगल कभी शिकायत नहीं करता। बस वो तो अगली ऋतु का इंतज़ार करता है, और शायद ज़िंदगी भी यही है। जो गिर गया उसे अंत मत समझो, और जो मिल गया उसे अपना मत समझो, और बस आगे बढ़ते जाओ अपनी गहरी जड़ों में उतरने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सी ये पंक्तियाँ हैं। वो यही हमें सिखाती हैं कि हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब मेहनत तो बहुत होती है पर नतीजा नज़र नहीं आता। लोग समझते हैं कि तुम हार गए हो, पर उन्हें क्या पता कि आप तो हर दिन खुद से लड़ रहे हो। इसीलिए याद रखें कि मुश्किल रास्ते अक्सर उन्हीं मंजिलों तक जाते हैं जहां पहुंचने का सपना हर कोई देख नहीं पाता। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले गीत की तरफ, और अगला गीत जो आ रहा है, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, और आवाज़ है लता मंगेशकर की, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम लेकर आ गए हैं बुलेट राजा को। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम और इस गीत की फरमाइश हमें आई है नेपा नगर से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी और मंगला पेन शाह। जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी करवी। मेरठ से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। मुरादाबाद से शीतल कश्यप, मुकेश कश्यप, पंकज, सीमा, काजल, मानवी, तन्वी, सोनी, लक्ष्य, ऋतिक मोहनी और बलवीर सिंह। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का बुलेट राजा फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के

0: संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बजने को है थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है।

0: reduce its role. In a social media post, ISRO said it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. The United States, South Korea and Japan today began a five-day joint military exercise, Freedom Edge, in international waters east and south of South Korea's Jeju Island. The exercise is proceeding on schedule even as key Seoul, Washington drills were recently scaled back upon U.S. President Donald Trump's order. South Korea's Joint Chiefs of Staff said the annual defensive exercise will focus on strengthening the three countries' operational and joint response capabilities across maritime, air and cyber domains. The drills are aimed at countering North Korean nuclear and missile threats and maintaining regional stability. The fourth edition of Freedom Edge is being held as scheduled despite the recent scaling back of the U.S.-South Korea Ulchi Freedom Shield exercise following an order from U.S. President Donald Trump. Benchmark domestic equity indices were trading in negative zone during the afternoon session today. The Sensex declined 485 points to 76,030, while the Nifty fell 145 points to 23,753 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे किया और रामघाट का जमीनी मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आला ने सैलाब से मुतासर 800 खानदानों में इमदादी सामान, बेघर खानदानों को रिहाइश के लिए जमीन के अलॉटमेंट सर्टिफिकेट और इमदादी रकम तकसीम की। वजीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में पूरी ताकत और हसासियत के साथ खड़ी है।
2: आपदा की इस घड़ी में आप सबको राहत सामग्री के साथ साथ मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे।
1: इस दौरान जनाब योगी ने सैलाब से मुतासर लोगों से बराए रास्त बातचीत की और उनके मसाइल सुने। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सैलाब से मुतासर जिले चित्रकूट का मुआयना करने के बाद राहत और बाज़ाबादकारी की कोशिशों का जायजा लेने के लिए अपनी सरकारी रिहायशगाह पर सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुतासर खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जानी चाहिए, फसलों और मकानात के नुकसान का फौरी सर्वे किया जाए और अहल अफराद को कवायद के मुताबिक इमदाद फराहम की जाए। वजीर आला ने हिदायत की कि दरियाए मंदाकिनी के कैंटेट में एरिया में तजावजात की निशानदेही करके उन्हें हटाया जाए, दरिया पर बनाए गए फुट ओवरब्रिज का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए कि गटर और ड्रेन का पानी किसी भी हालत में मंदाकिनी में न जाए। उन्होंने हिदायत दी कि चित्रकूट धाम के ताजिरों और खानकाहों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाए और मदद फराहम की जाए और मुस्तकबिल में ऐसे हालात से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए एक तवील मुद्दती एक्शन प्लान भी बनाया जाए। वजीर आला ने कहा कि सैलाब से मुतासर किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए और मुस्तहक किसानों को कवायद के मुताबिक मुआवजा फराहम किया जाए। मूसलाधार बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के 24 अजला सैलाब की जद में हैं और कई दरिया अब भी तुगियानी पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। प्रशासन ने गर्रा और खाखरा नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के कारण लगातार कटान हो रही है और यातायात बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: श्रावस्ती जिले के जमनाहा तहसील वीरपुर लोहाकिया में दरियाए राप्ती के तेज बहाव ने आसपास की जमीन को डुबा दिया है। बिजनौर, बदायूं, रामपुर और पीलीभीत में सैलाब और बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। कल 4 बच्चे कानपुर में, 1 बदायूं में और 3 महोबा में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबकर हलाक हो गए।

0: वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल और मसनूई ज़हानत AI और डीप टेक जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ ख़वाइंदगी पर जोर देते हुए आज कहा कि तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत और रोज़गार के शोबों में नए मौक़े पैदा कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी की पाती के उनवान से एक पोस्ट में वज़ीर-आला ने कहा कि तालीम सिर्फ बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें इल्म, इक़दार, नज़्म व ज़ब्त, खुद एतमादी और समझ भी फराहम करनी चाहिए, जो उनकी ज़िंदगी को सही सिमत में ले जा सके। उन्होंने कहा, आज टेक्नोलॉजी तेजी से हमारी जिंदगियों को बदल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत रवायती इल्म को जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात और महारतों से जोड़ रही है। 8 सितंबर को मनाए जाने वाले आलमी योम ख्वाइंदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल जाए और हर तालिब इल्म को मियारी तालीम हासिल हो और हर शहरी ख्वाइंदगी के साथ साथ डिजिटल नॉलेज और AI से भी आगाह हो। हज 2027 के लिए मुंतखब आज़मी ने हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस टेस्ट को दो मरहलों में लाजमी करार दिया गया है। पहला मरहला इंतखाब के बाद और दूसरा हज परवास से पहले होगा। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक ने बताया कि पहले मरहले में आज़मी ने हज को सरकारी तिब्बी मरकज में एलोपैथिक डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इस सिलसिले में तमाम अजला के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजाहत बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी से नवी राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का आगाज करेगी। इस साल नवे राष्ट्रीय पोषण माह का थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है। बागपत जिले के खेकरा थाना इलाके में पीर को देर रात एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 32 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब राजस्थान से बदायूं जा रही मुसाफिरों से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और बेकाबू होकर उलट गई। SP बागपत सूरज कुमार राय और जिला मजिस्ट्रेट स्मिता लाल ने मौके पर पहुंचकर वाकये की जानकारी हासिल की। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: सभी श्रोता बहनों और रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को रितंद्रा मिश्रा
1: और पूनम प्रभा का
0: नमस्कार।
1: बहनों, आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज का दिन हमें एक ऐसे विषय के प्रति जागरूक होने का अवसर देता है जिसके बारे में जानकारी समाज में बहुत ही जरूरी है। आज है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस।
0: बिल्कुल पूनम। और पूनम, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है और मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी का कारण बन सकती है। इसलिए इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना आज जो दिवस है उसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
1: और बहनों, अक्सर जानकारी के अभाव में परिवार शुरुआती संकेत को सामान्य कमजोरी समझ लेते हैं। बच्चों में दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने या फिर जमीन से उठने में कठिनाई जैसे संकेत अगर दिखाई दे रहा है तो विशेषज्ञ चिकित्सक के सलाह लेना ना भूलें। एक दुर्लभ अनुवंशिकी बीमारी है ये।
0: बिल्कुल सही कहा पूनम। और देखो, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहनों, जागरूकता डर पैदा करने के लिए नहीं होता, बल्कि सही समय पर डॉक्टर की सलाह, नियमित देखभाल से बच्चों और परिवार के लिए बहुत सहायक हो सकता है ना।
1: साथ ही हमें समाज के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। ड्यूशेन से प्रभावित बच्चों को सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान, सहयोग और समान अवसर चाहिए। यह मुख्य रूप से लड़कों में होता है क्योंकि इसका कारण DMD जीन में बदलाव और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी से होता है।
0: बिल्कुल। और विद्यालय हो, खेल हो का मैदान हो या सामाजिक जीवन, हर बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए।
1: तो इस अवसर पर आइए हम एक छोटा सा संकल्प लें, ड्यूशेन के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करेंगे, सही जानकारियाँ दूसरों तक पहुँचाएंगे और प्रभावित बच्चों और उनके परिवार के प्रति संवेदनशील

0: व्यवहार करेंगे।
1: याद रखिए, किसी बीमारी की जानकारी होना केवल चिकित्सक का विषय नहीं है, ये मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है।
0: तो बहनों, आज विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस पर हम यही संदेश देना चाहेंगे, जानकारी बढ़ाइए, भ्रांतियाँ दूर कीजिए और हर बच्चे को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। जागरूकता बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी और ड्यूशेन से प्रभावित परिवारों को हौसला भी बढ़ेगा। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आप सभी को विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस की शुभकामनाएं।
1: और पूनम भाई, देखो ये तो थी जानकारी, और अब अपने कार्यक्रम का रुख मोड़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
3: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: तो भाई पूनम, बहुत सुंदर गीत लगता है, ये मन को छू जाता है ना।
1: बिल्कुल।
0: और एक बात मुझे कहनी थी कि जब हम लोग कार्यक्रम के लिए स्टूडियो में आ रहे थे ना, तुम्हारा आज नया लुक जो ड्रेस का है वो मतलब बहुत अच्छा लगा, कि एक नई तरीके का जो कॉस्ट्यूम तुमने जो पहन रखा है, एक नया डिजाइन, तो इससे अच्छा लगता है ना कि कभी कभी ऐसे भी कपड़े पहनने चाहिए, है ना।
1: सबसे पहले दीदी इतनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगर हम कहें कि ये फैशन या तकनीक का कमाल है ना।
0: बिल्कुल। और मैं तो देखो कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी, फैशन सिर्फ पहनावा नहीं, व्यक्तित्व की पहचान है।
1: बदलते दौर के साथ चलने की भी एक नई उड़ान है।
0: और देखो तुमको देखकर तो मेरा मन कर रहा है कहने को कि सादगी में भी अपना अलग अंदाज निखरता है, जब आत्मविश्वास हो हर लुक खूबसूरत लगता है ना।
1: तो दीदी आपने इतनी अच्छी बात कही है, तो इसी बात पे हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं एक वार्ता, फैशन टेक्नोलॉजी में कैरियर की संभावनाएं। वार्ताकार है संस्कृति द्विवेदी।
2: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हमने आज के विषय की शुरुआत की है, फैशन डिजाइनिंग का प्रभाव और आजीविका की संभावनाएं, तो आइए सबसे पहले ये समझें कि फैशन आखिर है क्या। फैशन सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, यह एक अभिव्यक्ति है हमारे विचारों की, हमारे संस्कृति की और हमारे समय की। हर पहनावा एक कहानी कहता है, कभी परंपरा की, कभी विद्रोह की और कभी बदलाव की। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया था। और आज के युवाओं की बात करें तो स्ट्रीट वेयर, ग्राफिक टी शर्ट्स और एक्सपेरिमेंटल आउटफिट्स, ये दर्शाते हैं कि आज का युवा खुलकर खुद को व्यक्त करना चाहता है। फैशन का प्रभाव हर स्तर पर होता है, जैसे कि सामाजिक बदलाव में, लैंगिक पहचान को अभिव्यक्त करने में, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने में और सबसे अहम आत्मविश्वास को बढ़ाने में। एक साधारण साड़ी हो या एक ग्लैमरस गाउन, वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक एटीट्यूड है, एक पहचान है। आज के डिजिटल युग में फैशन और भी व्यापक हो गया है। रील्स, ब्लॉग्स, रेड कार्पेट लुक्स, फैशन ब्लॉग्स, इन सभी का असर आम लोगों की अलमारी में साफ दिखाई देता है। मशहूर डिजाइनर कोको शनाल की एक लाइन

लाइन याद आती है, फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली, फैशन इज इन द स्काई, इन द स्ट्रीट, इट्स अबाउट द वे वी लिव। यानी फैशन सिर्फ कपड़ों में नहीं, ये हमारे जीने के तरीके में होता है। जब आप किसी को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है उसका पहनावा। इससे पहले कि आप किसी से बात करें उनका फैशन बहुत कुछ कह जाता है। यही है फैशन का सबसे बड़ा प्रभाव, पहली छवि से ही प्रभाव छोड़ देना। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फैशन डिजाइनिंग सिर्फ रैंप वॉक के लिए कपड़े डिजाइन करना है तो एक बार फिर सोचिएगा। फैशन डिजाइनिंग एक बहुआयामी क्षेत्र है जहाँ कला, विज्ञान, संस्कृति, तकनीक और बाजार की समझ सबका मेल होता है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसे संस्थान फैशन की पढ़ाई के लिए बहुत ही नामी और उच्च स्तरीय संस्था हैं। ये छात्रों को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छे से प्रतिस्पर्धा कर सके। फैशन डिजाइन के कोर्स इस तरह से बनाए गए हैं कि उनमें न केवल डिजाइन करना सिखाया जाता है बल्कि मार्केटिंग और नए विचारों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

0: इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसे संस्थान फैशन की पढ़ाई के लिए बहुत ही नामी और उच्च स्तरीय संस्था हैं। ये छात्रों को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छे से प्रतिस्पर्धा कर सके। फैशन डिजाइन के कोर्स इस तरह से बनाए गए हैं कि उनमें न केवल डिजाइन करना सिखाया जाता है बल्कि मार्केटिंग और नए विचारों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र कई तरह के कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर्स इन डिजाइन, मास्टर्स इन डिजाइन, बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, MBA इन फैशन मैनेजमेंट, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, BSc एंड MSc इन डिजाइन। ये सभी कोर्स छात्रों को फैशन इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर बनाने के लिए तैयार करते हैं। अगर बात करें करियर ऑप्शंस की, तो फैशन डिजाइन के छात्र फैशन हाउसेस में, मनोरंजन, ऑनलाइन ब्रांड्स, मीडिया, रिटेल आदि जैसे उद्योगों में रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। फैशन की फील्ड में संभावनाएं अनगिनत हैं, जैसे कि एक फैशन डिजाइनर जो नए ट्रेंड्स बनाते हैं, कपड़ों को एक नई पहचान देते हैं। वहीं टेक्सटाइल डिजाइनर कपड़ों के पैटर्न, प्रिंट और फैब्रिक को नया जीवन देते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स जो फिल्म, थिएटर और टीवी के लिए किरदारों के अनुसार कपड़े डिजाइन करते हैं। फैशन स्टाइलिस्ट जो कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन या आम लोगों के लिए एक परफेक्ट लुक तैयार करते हैं। वहीं आते हैं फैशन ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो सोशल मीडिया पर फैशन को जनता तक पहुंचाते हैं। विजुअल मर्चेंडाइजर्स जो शोरूम और मॉल्स में प्रोडक्ट्स की प्रस्तुति को आकर्षक बना देते हैं। फैशन मर्चेंडाइजर्स जो कपड़े का थोक उत्पादन करने की प्रक्रिया संभालते हैं। ऐसे ही फैशन फोटोग्राफर, फैशन मार्केटिंग, एक्सेसरीज डिजाइनर, फैशन कम्युनिकेशन और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। आज के दौर में फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी है। पुराने कपड़ों को नया रूप देना, पर्यावरण अनुकूल फैब्रिक का इस्तेमाल करना, ये सब नए युग के फैशन डिजाइन का हिस्सा है। डिजिटल फैशन और AI टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र में तो क्रांति ही ला दी है। अब वर्चुअल फैशन शो हो रहे हैं, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर से कपड़े तैयार हो रहे हैं, यानी फैशन और टेक्नोलॉजी का एक शानदार मेल। और सबसे खास बात, फैशन के क्षेत्र में आप खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, फैशन डिजाइनिंग इसे सच करता है। तो दोस्तों, बात फैशन की है, लेकिन असली बात है फैशन के पीछे खड़े चेहरे की। वो चेहरा जिसे आप रैंप पर नहीं देखते, न कैमरे के फ्लैश में देखते हैं, पर जिसकी सोच, जिसकी मेहनत और जिसका दिल आपके कपड़ों में धड़कता है। एक फैशन डिजाइनर सिर्फ कपड़े नहीं बनाता, वो असल में कहानियां बुनता है। वो सोचता है कि इस पहनावे को पहनकर कोई इंटरव्यू देने जाएगा तो कोई अपने कॉलेज का पहला दिन जिएगा, कोई स्टेज पर खड़े होकर अपना हौसला जुटाएगा, तो कोई अपनी शादी में वो लहंगा पहनेगा जिसका सपना वो बचपन से देखता आ रहा है। डिजाइनर वो होता है जो आपसे पहले आपको समझता है और वो ये जानता है कि कौन सा रंग आपकी स्किन टोन से मेल खाएगा। वो ये जानता है कि अगर आस्तीन थोड़ी ढीली कर दी जाए तो आप सहज महसूस करेंगे, अगर ये कुर्ता पहना जाए तो आपको वो वही सुकून देगा जैसे कि माँ की मुस्कान। और आज के डिजाइनर्स वो सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, वो बदलाव के रास्ते बनाते हैं। प्लस साइज के लिए मंच तैयार करते हैं, तो ट्रांसजेंडर मॉडल्स को फैशन की दुनिया में पहचान दिलाते हैं, सस्टेनेबल फैशन से पर्यावरण की रक्षा करते हैं और लोकल बुनकरों की कला को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाते हैं। फैशन डिजाइनिंग सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है जो नजर से पहले दिल को छूता है। यह वो मंच है जहां कल्पनाएं आकार लेती हैं और रचनात्मकता समाज में नई सोच भर देती है। आज अगर आप फैशन की दुनिया में कदम रखने का सपना देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये रास्ता सिर्फ स्टाइल का नहीं है, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भी है। कपड़े बदलते हैं, ट्रेंड्स आते जाते हैं, पर जो बात दिल को छू जाती है वो डिजाइन युगों तक याद रह जाता है। आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनिए जहां हर सिलाई में एक कहानी है, हर रंग में एक भावना है और हर डिजाइन में एक भविष्य है।
1: मैंने अभी सुन रही थी वार्ता, फैशन टेक्नोलॉजी में करियर की संभावनाएं। वार्ताकार थी संस्कृति द्विवेदी। फैशन जो डिजाइनिंग का आजकल जो वो कोर्स है या जो लोगों के अंदर ट्रेंड है चल रहा है ना, तो वास्तव में बहुत सारी संभावनाएं हैं अगर करियर बनाना चाहे इसमें तो, है ना। और संस्कृति जी ने बहुत अच्छे से उसको परिभाषित भी किया है ना।
2: बिल्कुल।
1: और अब पूनम एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो पूनम भाई, ये जो गीत अभी तुम सुन रही थी ना, एक हमारे श्रोता ने फरमाइश की थी, तो इसलिए मैंने आज ये सुनवाया उनको। और वास्तव में जो गीत संगीत है, मन को तो स्वस्थ करते ही हैं। और कभी बहुत दुखी मन हो ना, तो और तुम अगर म्यूजिक सुनो कहीं लगा के, तो मन कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट का काम करता है ना, संगीत जो है।
1: बिल्कुल
0: तो भाई देखो, आज हम अपने गृहलक्ष्मी प्रोग्राम में कुछ घरेलू टिप्स भी लेकर आए हैं। तो आज पूनम बताएंगी बहनों कि वो क्या है।
1: तो बहनों, आज हम गृहलक्ष्मी टिप्स में लेकर आए हैं जंग छुड़ाने के घरेलू उपाय। तो लोहे की टच में कई दिनों तक रहने पर कई जगहों पर या फिर चीज़ों में जंग के निशान लग जाते हैं, ख़ास करके इस बारिश के मौसम में या फिर नमी की वजह से। तो जंग के जो निशान हैं या फिर रस्ट इंस्टेंस हैं, उसको हटाने के कुछ बेहद आसान, असरदार और घरेलू उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर हम मिनटों में साफ़ सुथरी चीज़ें पा सकते हैं जिसमें जंग लगी हो।
0: बिल्कुल। और पूनम, मैंने देखा है किचन में जो लोहे की कढ़ाई है, खासतौर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जब मांझ के रखो तो वो जो है उसमें जंग दिखाई देता है ना।
1: लोहे की कढ़ाई हो गई या चाकू हो गया। हाँ, तो ये उपाय खास करके लोहे के बर्तन, दरवाजे, ग्रिल, औजार या टूल्स, कपड़ों पर पड़े जंग के निशानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू और नमक। बहनों, नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड जंग को ढीला करता है और नमक एक प्राकृतिक स्क्रबर की तरह काम करता है। तो इसका तरीका ये है कि जंग लगी जगह पर थोड़ा सा नमक छिड़कें, उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ें और 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। इसके बाद नींबू के छिलके या फिर ब्रश से रगड़ कर उसको साफ करें।
0: ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया।
1: और दूसरा तरीका है कि सफ़ेद सिरका, जी हाँ, विनेगर। सिरके का एसिटिक एसिड जंग के साथ रिएक्शन को पूरी तरह से घोल देता है। और इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर छोटी चीज़ें जैसे कि नट बोल्ट या फिर टूल्स है, तो उन्हें रात भर सिरके के घोल में डुबो कर रख दें। और बड़ी चीज़ों के लिए हम ये कर सकते हैं कि सिरके में भीगा हुआ कपड़ा को जिस चीज़ में हम जंग छुड़ाना चाहते हैं उसमें हम लपेट कर रख दें, और सुबह ब्रश या फिर एल्युमिनियम फॉइल की सहायता से उसको रगड़ कर उसके जंग को साफ कर सकते हैं। तीसरा है आलू और बेकिंग सोडा या फिर नमक। कच्चे आलू में ऑक्सॉलिड एसिड होता है जो कि जंग को काटने में बहुत मददगार साबित होता है।
0: अच्छा,
1: और
0: ये किचन में ही सबके मौजूद
1: हाँ,
0: होता
1: हमारे
0: है,
1: किचन
0: आसानी
1: में
0: से
1: ही
0: हम
1: सारी
0: कर
1: चीज़ें
0: सकते
1: मौजूद
0: हैं।
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: और चौथा है कि कोल्ड ड्रिंक, जी हाँ बहनों, जो हम पीते हैं वो हमारे सफाई में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो कि कॉमर्शियल जंग हटाने वाले केमिकल्स में भी इस्तेमाल होता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन इन सब चीज़ों में एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जंग साफ तो हमने कर दिया, लेकिन साफ करने के बाद जो भी हमारी मेटल की चीज़ है उसको पूरी तरह से सुखाना ना भूलें, क्योंकि कहीं भी अगर नमी रह गई तो नमी के कारण दोबारा जंग लग सकती है। तो बहनों, सफाई के बाद उस पर नारियल तेल या फिर सिलाई मशीन का तेल ज़रूर लगाएं ताकि भविष्य में उस पर जंग ना लगे।
0: अच्छा, तो ये मुझे लगता है जब हम लोग कभी लोहे की कढ़ाई को मांझ के रख देते हैं तो जब सूखता है तो सूखने के बाद उसमें जंग दिखाई देता है, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें नमी रहती है, पानी थोड़ा बहुत लगा।

0: रहता है
1: तो
0: ना।
1: उस पे अगर हम तेल लगा देंगे
0: बिल्कुल।
1: तो वो सही हो
0: और देखो तुम्हारे
1: जाएगा।
0: जो बताए हुए तरीके हैं उसको मैंने मन में ग्रहण किया, मेरा भी मन बदल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि इस प्रयोग मैं भी अपने किचन में करूँगी। और देखो मन की जब बात चल रही है ना, तो मन बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, वक्त के साथ जज्बात बदल सकते हैं।
1: जो अपना है कल पराया भी हो सकता है, इंसान वही रहता है मगर विचार बदल सकते हैं।
0: तभी तो कहती हैं तनु नेहा मन बदल सकता है। तो आइए बहनों सुनते हैं अगली प्रस्तुति भोर।

0: तनु, क्या आपने कभी ऐसा खुद में या किसी को ऐसा पाया है कि मन मस्तिष्क बहुत आग बबूला है, मन की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या कुछ पल, क्षण भर के लिए मन बहुत व्यथित हो गया, किसी के सामने गए हों, चंद लाइनें सिर्फ कही हों और ऐसी बात निकली कि मन ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया, पता नहीं ऐसा मरहम लगा कि वो मन जो शायद व्यथित था, छलनी छलनी था और अपने आप को कमज़ोर पा रहा था, अचानक से उसमें ताकत आती है, उसमें खुशहाली आ जाती है।
1: हाँ नेहा जी, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं। देखिए, हमारे जो दिमाग का स्ट्रक्चर है ना, वो एक नेटवर्क टाइप का है।
0: जी
1: वो ट्रबल शूट करने लगता है। जब कोई एक थॉट दिमाग में आया तो वैसी ही चीज़ें पीछे चलने लगती हैं। जैसे आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि अगर कुछ फ्रेंड्स बैठ के किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सपोज़ वो हॉरर मूवीज़ की बातें कर रहे हैं, तो अगर एक ने अपना एक्सपीरियंस बताया तो दूसरे ने अपना एक्सपीरियंस बताया, फिर आपके भी दिमाग में वैसी ही बात आई। तो हमारे सेल्फ के ब्रेन में भी वैसा ही होता है। तो जब हम व्यथित होते हैं, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही होती है, तो बजाय हमारा दिमाग उस चीज़ का सल्यूशन निकाल पाने के, वो वैसी ही चीज़ों को और याद करते करते और उसी में डूबता चला जाता है। फिर जब कोई हमारे सामने आकर कुछ ऐसी बात कह दे कि हमें उसका सल्यूशन दिखाई दे, या कोई चीज़ क्लिक करे कि हाँ शायद इस वजह से ऐसा हुआ या इसका ये सल्यूशन हो सकता है, तो एकदम से शांति मिल जाती है या एक रास्ता या सल्यूशन दिखाई देता है।
0: बिल्कुल। अब बात ये आती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सपोज करिए कि किसी का मन बहुत व्यथित हुआ, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हम ना अपने लिए अच्छा सोच पा रहे हैं ना सामने वाले के लिए अच्छा सोच पा रहे हैं। अब भाई उस व्यक्ति को कहाँ से ढूंढें जो हमें मरहम की तरह लगे, हमें सॉल्यूशन दे या हमारे मस्तिष्क को 180 डिग्री चेंज कर दे।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ऐसा ढूंढने से तो होगा नहीं।
0: हाँ
1: तो इसका सल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि हमें इस बात को हर वक्त समझ के रखना होगा कि कभी कभी एक पल का जो एग्रेशन होता है वो बहुत बुरे रिजल्ट्स दे सकता है। कई बार जो लोग खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, वो भी शायद किसी एक पल का ही मतलब दुविधा होती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ बचा नहीं है। तो बजाय इसके कि हम किसी दूसरे को ढूंढें, हमें खुद को ही समझाने का तरीका ढूंढना होगा और हमें खुद से ही बात करनी होगी।
0: हाँ अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आती है, जब हम खुद से बात करना शुरू करते हैं, चूँकि हमारा मन बहुत व्यथित है और चंचल भी है, उसको हमने कभी एकाग्र किया नहीं, तो अपने मन से बात करना थोड़ा दुरूह लग सकता है। एक आइडिया है,
1: बताइए।
0: अगर आप उस स्थिति को लिखें, मतलब

0: शब्द दर शब्द लिखें और सॉल्यूशन भी लिखें, दो तीन चार जितने मन में आए सॉल्यूशंस लिख दें, आदर्श सॉल्यूशन भी लिखें और यथार्थ भी, या आपके जहन में जो बात चल रही वो भी, वो चाहे सही हो गलत हो।
1: बिल्कुल।
0: अब जब आप लिखते चले जाएंगे सॉल्यूशंस के कई प्रकार, होगा ये कि आपका मन मस्तिष्क एक नई राह पकड़ेगा और शायद आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, और ये जो मन की उलझन होती है धीरे धीरे विराम लेने लगेगी, और ऐसे विराम लेगी कि आपको उस रास्ते पर ला खड़ा कर देगी जहाँ असल में आपको जाना चाहिए या होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं नेहा जी आप, भले ही ये सुनने में शायद इतना आसानी से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसको करके देखिए। इसका एक तरीका ये भी है कि आप ये सोचिए कि जिस स्थिति में आप हैं, अगर उस स्थिति में कोई और होता तो आप उसको क्या कह के समझाते। कोई भी हमारे सामने आता है तो हम कभी भी ये नहीं करते हैं ना कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया या कुछ भी, हम किसी न किसी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को ही समझाने की कोशिश करें।
0: और ये भी बात माने कि जो पहली स्थिति थी कि मन व्यथित हुआ, किसी से सामना हुआ, उसने आपके मन की स्थिति मिनटों में पल भर में बदल दी। इसका मतलब है कि आपका मन बदलना जानता है, बदल सकता है।
1: बिल्कुल, वैसी वर्षा भी हो सकता है।
0: प्रमाण है। तो बस शुरू करिए इस यकीन के साथ कि थिंग्स विल हैपन एज यू विश।
1: बिल्कुल।

0: वैनू, अभी आप सुन रही थी भोर। आज का विषय था मन बदल रहा है, जिसमें बातचीत कर रही थी तनु आर्य और नेहा गुप्ता जी।
1: और क्या नाम है पूनम, जब तनु और नेहा जी बात कर रही थी तो वास्तव में जो मन शब्द है ना, वो मतलब अगर बहुत ही भाव विभोर होके अगर सोचो तो वो कहीं ना कहीं मन को झकझोर देता है। तो वो जब मैं पूरा ये 6 मिनट का जो भी हम लोगों का प्रोग्राम हुआ तो उसका उसको सुनते ही मैंने जो मेरे भी मन में आया वो मैं कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि मन में उजियारा हो तो रात भी सवेरा है, हौसला साथ हो तो हर पल सुनहरा है। मन हार जाए तो जीत भी अधूरी है, मन हार जाए तो जीत भी अधूरी है, मन जाग उठे तो मंजिल कहाँ दूर है। दुख की घटनाओं में उम्मीद का प्रकाश रहे, हर कठिन राह में विश्वास का साथ रहे। मन को संभाल लो जीवन संवर जाएगा, नेहा जी के शब्दों में बोल रही हूँ, मन को संभाल लो जीवन संवर जाएगा, जो खुद पर विश्वास करे वो जीत जाएगा, है ना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर,
1: और
0: बहुत सुंदर
1: देखो
0: पंक्ति सुनाई।
1: भावनाओं के साथ अब जो अगला कार्यक्रम है हम निखार बहनों को सुनाए, लेकिन उससे पहले गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: तो भाई पूनम, इस खूबसूरत से गीत के बाद अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो है निखार। तो आज हम निखार में बहनों को बताएंगे राइस वाटर एक मैजिकल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है ना?
1: जी हाँ बहनों, चावल का पानी जिसका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं यानी कि बहा देते हैं, तो चावल का पानी एक जादुई सौंदर्य घटक है। चमकती और बेताक त्वचा पाने के लिए हम लोग केमिकल युक्त चीज़ों पर न जाने कितने रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन बहनों क्या आप जानती हैं कि जिस कुदरती निखार की तलाश हम कहीं और ढूंढते हैं वो हमारे किचन में ही मौजूद है। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं सफ़ेद मोती यानी कि चावल की। स्किन केयर एक्सपर्ट की माने तो चावल का पानी हमारी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल चेहरे की खोई हुई रौनक वापस लाता है बल्कि बढ़ती उम्र के निशानों को भी थाम लेता है। चावल के पानी में, राइस वाटर में विटामिन बी, ई और कई अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से लड़कर हमारे चेहरे को प्रदूषण और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। तो इस जादुई पानी का हम फेस वॉश भी बना सकते हैं घर पे।
0: और कैसे इस्तेमाल करें?
1: हाँ, और होममेड राइस फेस वॉश बनाने के लिए चावल चाहिए और गुलाब जल, शहद, बादाम का तेल और एलोवेरा और थोड़े से बेबी फेस वॉश की भी ज़रूरत होगी इसमें। तो इसकी विधि है कि चावल को रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह इस पानी को छान लें, इसमें सारी सामग्रियां मिला लें जो भी अभी हमने बताई, जैसे कि गुलाब जल, शहद, एलोवेरा, बादाम का तेल और थोड़ा सा बेबी फेस वॉश। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और एक बॉटल में स्टोर कर लें और इसको अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल करें।
0: बहुत अच्छी विधि बताई पूनम। और देखो, इसी के साथ जो है हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और तुमने जो आज बताई है निश्चित रूप से हमारी बहनें भी प्रयोग करेंगी। अच्छा, ये जो राइस का पानी का है, पहले लोग वो भगोने में या बटली में बनाते थे ना, हाँ। तो वो इस्तेमाल करते थे,
1: उसका माड़ भी निकालते थे।
0: आज कुकर में बनाने लगे हैं तो शायद वो पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन प्रयास करें कि अगर इतना उपयोगी है तो हम इसका जरूर है इस्तेमाल करें, है ना। और देखो, इसी के साथ हमारी अनाउंसर महोदय इशारा कर रही है, प्रोग्राम हो रहा है समाप्त। तो बहनों से लेते हैं विदा।

0: last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadeem ul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीम उल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार।

0: और समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: रेटिफिकेशन लाइकली इन द कमिंग फ्यूचर।
2: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
4: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
2: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
6: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्लीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर

0: पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ

0: एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दो दैनिक से जुड़े सात परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर

0: शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते हैं।
2: हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1: जी,
2: वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी,
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
1: जी,
2: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
1: जी,
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
2: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
2: जी,
1: हैं? जी। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए NCERT की क्या भूमिका है?
2: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी,
2: और इसी के चलते NCERT भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी,
2: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
2: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी,
2: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
2: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी।
2: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
1: या
2: लोग
1: तो वंचित वर्ग भी कह
2: वंचित
1: सकते
2: लोग
1: हैं।
2: जो हैं, तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक

0: रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं। कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
1: उन सबको शामिल करती है। जी,
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं, ड्रॉप आउट रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: किनमें, लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
1: जी।
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है।
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित
0: बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
0: बच्चियों का, लड़कियों का।
1: हाँ।
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
1: जी,
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सके,
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
0: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हो। आप ये कहना चाहती हैं?
0: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसमें स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी,
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के

0: वाले सभी उन लोगों की,
1: जी
0: जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC ST
1: आदिवासी
0: OBC
1: लोग, जनजातीय
0: माइनॉरिटी
1: लोग।
0: जनजातीय लोग, है ना, तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो हमारी टेक्स्ट बुक में, इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है,
0: जी
1: इसका अर्थ शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है।
1: जी
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके।
1: जी
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1: जी
0: है
1: जी
0: उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि
0: और
1: समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको
0: जी
1: कम मिले,
0: जी
1: इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: या हाँ,
1: जी
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है।
1: जी
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है
1: हाँ
0: तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
0: जी
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज।
1: जी
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया।
1: जी
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें।
1: जी
0: जो जेंडर का अर्थ था वो
1: बिल्कुल
0: सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: जबकि
0: है।
1: जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना,
1: जी
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं।
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता की जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना,
1: जी
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें।
1: रूढ़िवादिता, जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे।
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिख

0: दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं।
1: जी
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना।
1: जी
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी। अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें। जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में
0: हाँ
1: इत्यादि, है ना।
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी
0: उनकी
1: रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र
0: प्रतिभागिता
1: में इसकी
0: रही।
1: चर्चा है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी
0: अलग
1: बल्कि।
0: छवि जो है
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है।
0: एक
1: जी हाँ।
0: पुरुष है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन।
0: विच इज अ
1: जी हाँ।
0: न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी,
1: जी
0: बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में,
1: जी
0: अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता
1: जी
0: है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो
1: हो
0: सकता
1: सकता है, बिल्कुल हो
0: है
1: सकता
0: ना।
1: है। जी
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड
0: बट
1: है। जी
0: एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे एक छात्र जो है खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी
0: इसके भीतर। सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले
1: और
0: सके।
1: दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ
0: समानता,
1: बैठ सकते हैं।
0: जी।
1: जी
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना
0: और
1: बनाने के लिए
0: खाना
1: महिला।
0: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
1: जी
0: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
1: जी।

0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसकी बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते
0: न्यूट्रल
1: हैं,
0: शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी हाँ
0: जी, कई बार क्या होता है ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है।
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी,
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे
1: छवि
0: में,
1: है।
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई
1: जी
0: देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं। जी
0: हाँ। तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सकें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहाँ पर भी आप उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय हिंद। स्वागत है आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल साथियों का आपके फेवरेट प्रोग्राम नन्हे दुनिया में। मैं हूँ रितंद्रा दीदी।
0: और बच्चों मैं हूँ पूनम दीदी। दीदी हमारे ये जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया कि बहुत होशियार और समझदार भी हो रहे हैं। चाहे वो छोटे मोटे काम के लिए हो, अपनी मम्मी पापा, अपने दादा दादी, भैया दीदी की मदद करना हो, या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी कोई काम हो, फिर या फिर अच्छे नंबर लाने की उम्मीद हो।
1: दीदी बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। भाई देखिए, पढ़ाई लिखाई, अच्छी शिक्षा तो ठीक है, लेकिन आज के इस कंपटीशन वाले दौर में अच्छे नंबर लाने का जो दबाव है ना, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है दीदी।
0: और आजकल कई माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करें। इसी दबाव में कभी कभी वो अपने बच्चों की तुलना दूसरों बच्चों से करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
1: बिल्कुल, और ऐसी बातें देखिए बच्चों के मन में असफल होने का भी जो डर पैदा करती है दीदी, क्योंकि इससे बच्चों के लिए जो पढ़ाई है खुशी के बजाय, यानी कि जो तैयार करते हैं कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होके, वो चिंता का भी उनके विषय बन जाता है ना, और ऐसी बातों से बच्चों के मन में हीन भावना और जो असफल होने का जो है डर है वो उनके अंदर होने लगता है।
0: हाँ, और बच्चों ये हम अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है, हम पेरेंट्स की, कि सभी बच्चों को सीखने की गति और क्षमताएं एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हमें बच्चों को अच्छे अंक के लिए प्रेरित तो करना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये भी विश्वास दिलाना होगा कि अच्छे अंक तो बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा जो है वो वही है कि जो बच्चों को ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास, रचनात्मकता और खुशहाल जीवन जीने की कला भी सिखाए, और बच्चों पर दबाव नहीं बल्कि प्रेम, प्रोत्साहन और सहयोग की भावना पर ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी। और देखिए हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं ना रेडियो सेट पे, वो बहुत समझदार हैं। जो बच्चे शुरू से मतलब तैयारी करते हैं, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे जो होमवर्क की हो, या जो मैडम पढ़ाती हैं स्कूल में, तो वो निश्चित रूप से वो अपने को तैयार पहले से ही कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी, जो छोटे मोटे, जो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, खेल में मन लगा लेते हैं या टीवी देखने लगते हैं, तो ये उनके लिए है कि वो जो है शुरू से ही अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो हम उनको सुनवाएंगे ये प्यारा सा गीत।

0: तो बच्चों मजा आया ना सफर करके।
1: बहुत मजा आया।
0: और भाई देखो, अब पूनम दीदी हमारी जो है वो तुम्हें बताएंगी जड़त्व के बारे में।
1: बच्चों, जड़त्व एक भौतिक विज्ञान का एक रोचक सिद्धांत है और इसे हम कई उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है कि एक छोटी सी गेंद लें, उसको मेज़ पर रखें। अब बच्चों से पूछेंगे कि क्या गेंद अपने आप चल पड़ेगी, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, लेकिन जब हम गेंद को हल्का सा धक्का देंगे तो वो चलने लगेगी। इसका मतलब बाहर से बल लगाने पर उसकी अवस्था बदल जाती है और जब गेंद रुक जाती है तो वह फिर से स्थिर हो जाती है। यही जड़त्व का नियम है। और दूसरा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि जैसे कि हम कहीं सैर पे जाते हैं, कहीं बस से जाते हैं और चलते चलते बस अचानक से रुक जाती है, तो जब भी रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस रुक जाती है तो हमारा शरीर तो गति में रहता है और इसलिए झटके लगने से हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है। और इसी कारण कहते हैं ना कि जब वाहन फोर व्हीलर गाड़ी में जब भी हम बैठते हैं, चार पहिया गाड़ी में जब भी बैठते हैं, तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और क्योंकि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भारी वस्तु में जड़त्व बहुत अधिक होता है। जैसे कि एक भारी गेंद को चलाना हल्की गेंद की तुलना में बहुत ही कठिन होता है। और बच्चों, जड़त्व हमें बताता है कि वस्तुएं अपनी अवस्था बदलना पसंद नहीं।

0: करती हैं। खेल, प्रयोग और सरल उदाहरणों की मदद से हम इस जड़त्व को आसानी से समझ सकते हैं, और इसी तरह की जानकारियों की वजह से विज्ञान हमारे लिए और भी रोचक बन जाता है। क्यों
1: बिल्कुल
0: बच्चों?
1: बिल्कुल, पूनम दीदी ने जो बताया बच्चों, और मुझे लगता है कि बच्चे छोटा छोटा ऐसे प्रयोग करते ही रहते हैं। और बच्चों, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सुनाने जा रही हूँ एक मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा की छोटी सी कहानी। तो एक हरे भरे जंगल में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। चींटी बहुत मेहनती थी। वो सुबह होते ही अपने लिए भोजन इकट्ठा करने निकल जाती थी और शाम तक मेहनत करती रहती थी। टिड्डा दिन भर खेलता, गाता और पेड़ की छाया में आराम करता। वो चींटी को देखकर हंसता और कहता, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जीवन का आनंद लो। चींटी मुस्कुरा कर कहती, आज की मेहनत ही कल का सहारा बनती है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रही। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था बच्चों। वो भूखा और परेशान होकर चींटी के घर पहुंचा। चींटी ने उसे भोजन दिया और प्यार से समझाया, मित्र, जीवन में केवल खेलना और आराम करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें पढ़ाई, काम और अपने भविष्य के लिए भी समय निकालना चाहिए। टिड्डे को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने चींटी से कहा, अब मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। मैं रोज़ कुछ न कुछ नया सीखूंगा और मेहनत करूंगा। अगले दिन से टिड्डे ने अपना जीवन बदल लिया। वो रोज़ समय पर उठता, पढ़ता, नई बातें सीखता और अपने काम पूरे करता। धीरे धीरे वो भी समझदार और जिम्मेदार बन गया। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि समय बहुत मूल्यवान है। जो बच्चा नियमित रूप से पढ़ता है, मेहनत करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में
0: आगे
1: बढ़ता,
0: बढ़ता
1: है, है ना? तो इस छोटी सी कहानी से सीख लेकर भाई जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। और पूनम दीदी भाई, देखिए मौसम भी बदल रहा है, कभी धूप है, कभी बारिश है, और तो ऐसे में जो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो मैं उनसे कहूँगी कि वो जो है मौसम का ख्याल रखें और खाने पीने की चीज़ों पे कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसे बाहर की चीज़ें तो नहीं खाएं इस समय, तो और अच्छा है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत साफ़ सफाई नहीं हो रहती है। कोशिश करें कि घर के ही खाने खाएं। और घर पे जो खाना है बच्चों, अब हम लोग हमेशा प्रोग्राम में बताते हैं, वही खाओ जो स्वास्थ्य के लिए हो, है ना?
0: और आपको जो भी पसंद हो, जो भी खाने का मन करे, वो अपनी मम्मा से बोलिए, मम्मा आपको फटाफट बना के खिलाएंगी, जो कि स्वादिष्ट भी रहेगा और सेहतमंद भी रहेगा, है ना दीदी?
1: बिल्कुल। और भाई वैसे बच्चे तो समझदार हो गए हैं, और बच्चों से भी ज़्यादा समझदारियाँ जो उनके मम्मी पापा हैं वो करने लगे हैं, क्योंकि खाने का जो स्टाइल है वो चेंज कर दिए हैं। और देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम का समय भी अब देखो आ गया है समाप्त होने पर, और हमारी दीदी इशारा कर रही हैं कि समय हो रहा है समाप्त, तो उस दिशा की ओर बढ़ते हैं और बच्चों से कहते हैं जय हिंद।

अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी अच्छे मूड के साथ शुरू करते हैं आज के युवानी का अनदर एपिसोड। और आज मैं हूँ आपकी दोस्त सेजल, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम युवानी में। वैसे दोस्तों, आजकल मौसम कितना बदलता रहता है ना, कभी ठंडी हवा, कभी अचानक बारिश, और आज तो धूप। भाई, शायद ये मौसम भी बताना चाहता है कि उसकी तरह हमारी लाइफ भी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कभी सब कुछ ब्राइट सा लगता है तो कभी थोड़ा सा डलनेस सा लगने लगता है। और भैया, आजकल हम सबकी लाइफ में तो एक अजीब सी रेस चल रही है। किसी को परफेक्ट मार्क्स चाहिए, किसी को परफेक्ट करियर, किसी को परफेक्ट पर्सनालिटी, और आजकल सोशल मीडिया ने तो परफेक्ट लाइफ का एक अलग ही व्यू बना रखा है। इट मीन्स कि कहीं सेलिब्रेशंस हो, अचीवमेंट्स हो या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को देखकर हम अपनी लाइफ को जज करने लगते हैं। लगता है यार, मेरी लाइफ में सब कुछ इतना सॉर्टेड क्यों नहीं है। तो दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, नो बडी इज़ परफेक्ट, और सच कहूँ तो परफेक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। आपके मार्क्स कभी कम हो सकते हैं, कभी कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, कभी कोई डिसीजन गलत हो सकता है, कभी पूरा दिन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता, तो इट्स ओके, क्योंकि लाइफ कोई एग्जाम पेपर नहीं है जिसमें हर आंसर्स करेक्ट होना चाहिए। लाइफ में मिस्टेक्स भी होती हैं, कन्फ्यूजन्स भी होता है, और कभी कभी बिना किसी क्लियर रीजन के मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। और दोस्तों, ये सब तो नॉर्मल है। कभी कभी हम अपनी इम्परफेक्शंस को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी हैं हम उन्हें देखना ही भूल जाते हैं, और इन सब चीज़ों को परफेक्ट करने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वो खुश रहना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, लाइक कोई अचीवमेंट्स मिले, या कहीं घूमने जाएं, या कोई स्पेशल डे हो। लेकिन अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो कभी एक रैंडम सा मैसेज भी आपके मूड को चेंज कर देता है। कभी किसी दोस्त को बिना मतलब कॉल करना, कभी घर पर अपना फेवरेट खाना बनाना, या कभी किसी फेवरेट मोमेंट्स का अचानक याद आना, या फिर कभी पूरा दिन बिजी होने के बाद शाम में खुद के लिए और अपनों के लिए वक्त निकालना, ये सब भी तो खुशी है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम इन छोटी छोटी खुशियों के लिए रुकते ही नहीं हैं, बिकॉज हमारी लाइफ में एक वर्ड कॉमन हो गया है ना, बिजी। अभी बिजी हूँ या फिर थोड़ी देर में कर लेता हूँ, और ऐसे में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बाद में करते करते आज को ही पोस्टपोन कर रहे हैं। हम फ्यूचर के बड़े मोमेंट्स का वेट करते रहते हैं और प्रेजेंट के छोटे मोमेंट्स को ही मिस कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ हो जाएगा तब खुश होंगे, या जब एग्जाम्स खत्म होंगे तब रिलैक्स करेंगे, या फिर लगता है कि कभी हॉलीडेज होंगी ना तब इंजॉय कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, लाइफ तो इसी बीच चल रही होती है ना, और शायद इसीलिए हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बिना किसी टॉपिक के बात करना भी ज़रूरी है, कभी अपना फेवरेट सॉन्ग रिपीट करके सुनना भी ज़रूरी है, और कभी बिना किसी रीज़न के स्माइल करना भी ज़रूरी है, या फिर कभी बस चाय या कॉफ़ी लेकर बालकनी

में बैठ जाना भी ज़रूरी है। ये सब छोटे मोमेंट्स हैं लेकिन बहुत सुकून है इनमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने आपसे ये कहना कि मैं परफेक्ट हूँ। तो दोस्तों, अगर आज आपका दिन परफेक्ट नहीं था तो कोई बात नहीं, शायद आज के दिन का कोई मोमेंट तो अच्छा रहा होगा। बस उस मोमेंट्स को याद कीजिए, क्योंकि लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें बड़े चेंजेस नहीं, बस छोटी खुशियों को नोटिस करने की एक हैबिट चाहिए आप। और शायद खुशी का तो कोई रास्ता परफेक्शन से होकर नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि खुद को वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना होता है जैसे हम हैं। और ऑनेस्टली, अगर आप सब कुछ परफेक्ट होता ना, तो भी शायद लाइफ में वो लिटिल सरप्राइजेस, वो मिस्टेक्स और अनएक्सपेक्टेड जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो कहाँ से आते। इसलिए उसे परफेक्ट पिक्चर की तरह मत बनाइए। एज वी नो कि नो वन इज़ परफेक्ट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। वॉट ट्रूली मैटर्स इज हैविंग द ऑनेस्टी टू एक्नॉलेज आर शॉर्ट कमिंग्स, द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट देम एंड द सिंसियरिटी टू वर्क ऑन देम।

तो दोस्तों, इस ट्रैक के बाद अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग बात पर। एज वी ऑल नो कि हमारे हर टास्क को बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट बनाया है एआई ने। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। इट मींस कि कोई आइडिया चाहिए या फिर कुछ लिखना हो, नोट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो या कुछ नया क्रिएट करना हो, तो बस एआई। और आज की हमारी चर्चा पर इसी पर बेस्ड है। आज हम चर्चा करेंगे एआई वर्सेस क्रिएटिविटी, यानी एआई बनाम रचनात्मकता। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं कि एआई हमारी लाइफ में अचानक तो आया नहीं। हम बहुत समय से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। पहले कैलकुलेटर आया तो लोगों ने कहा अब हिसाब कौन करेगा। फिर कंप्यूटर्स आए तो लगा बहुत सारे काम मशीन्स कर लेंगी। फिर स्मार्टफोन आए और तो काफ़ी कुछ बदला, और अब एआई। बस फर्क इतना है कि इस बार टेक्नोलॉजी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं फॉलो कर रही है, बल्कि ये हमारे साथ सोचने जैसा काम भी कर रही है, और यही चीज़ इसे बाकी टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग बनाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको कोई कंटेंट लिखना है और आपके पास कोई आइडिया है, पर शुरुआत कैसे करें यह समझ नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सीजल अब क्या करें, पर पहले शायद आप लिखते थे, फिर उसको काटते थे, फिर दोबारा लिखते थे, मतलब ट्राई करते थे ना। कभी कभी बहुत सारे पेजेस भी ऐसे फाड़ने पड़ते थे कि अब इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास एआई है, हम एआई से कह सकते हैं, और इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन क्या आप सेम एज इट इज़ उसे कॉपी कर देंगे या उस कंटेंट में कुछ अपना ऐड करेंगे? शायद आपका एक्सपीरियंस हो या आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, एंड मेनी मोर। तो ये चीज़ ही क्रिएटिविटी है। हम अक्सर क्रिएटिविटी को बहुत ग्लैमरस चीज़ समझते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि क्रिएटिव शख्स वही है जिसे पेंटिंग बनानी आती हो, या जो पोइट्रीज लिखता हो, या जो कोई नया इन्वेंशन करता हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप किसी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं सोचा, वो भी क्रिएटिविटी है। किसी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाना या फिर किसी आइडिया को नए तरीके से प्रेजेंट करना, ये भी क्रिएटिविटी है। मतलब कि क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, क्रिएटिविटी का एक बड़ा हिस्सा है कुछ अलग तरीके से सोचना या एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखना। लेकिन अब ये आप सोच रहे होंगे कि अगर एआई पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, या कोई पोइट्री लिख रहा है, तो क्या हम उसे क्रिएटिव कह सकते हैं? एक नज़र से देखें तो हाँ, एआई ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है जो हमें क्रिएटिव लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मन में आता है कि एआई के पास लाइफ एक्सपीरियंसेस कहाँ हैं? उसे किसी पुराने गाने को सुनकर वो बचपन याद नहीं आता। उसे बारिश में भीगने का वो जो एक्सपीरियंस उसने नहीं लिया है। उसे तो ये भी नहीं पता कि आजकल इंस्टेंट चीज़ जो मिलती है उसके लिए वेट करना भी ना एक अनुभव है। और शायद यही डिफरेंस है एआई और हम में, क्योंकि हम अपनी मेमोरीज, मिस्टेक्स, इमोशंस और ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं। पर साथियों, इसका दूसरा पहलू भी देखना ज़रूरी है कि एआई को सिर्फ क्रिएटिविटी का कॉम्पिटिटर मान लेना भी सही नहीं होगा। सपोज आपके दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसे करूँ, तो एआई आप

आपकी हेल्प कर सकता है, आपके पास स्टोरी का प्लॉट है बट यू डोंट नो द स्ट्रक्चर, तब एआई ऑप्शंस दे सकता है। यानी कि एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल शायद ये नहीं कि मेरे लिए क्रिएट करो, बल्कि ये हो सकता है कि मेरे साथ क्रिएट करो। और ये छोटा सा फ़र्क ना दोस्तों बहुत बड़ा है, क्योंकि जब एआई हमारे लिए सोचने के बजाय हमारी सोच को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, तभी वो हमारी क्रिएटिविटी का साथी बनता है, उसका विकल्प नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रॉब्लम एआई में है या फिर उसके यूज़ करने के तरीकों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम हर छोटी चीज़ के लिए एआई से आंसर लेने लगें, हर आइडिया एआई से लेने लगें या हर डिसीजन उससे पूछने लगें, तो धीरे धीरे हम खुद सोचना कम कर सकते हैं और क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी एनिमी शायद एआई नहीं बल्कि हमारी अपनी कन्वीनियंस है। क्योंकि हमें जब हर चीज़ का आंसर इंस्टेंट मिल जाए तो सवाल पूछने की या कोई चीज़ लेट मिलने पर हम उसकी वर्थ नहीं समझेंगे, और ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बन सकती है। और साथियों क्रिएटिविटी में आंसर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, तो करेंगे इस पर आपसे

हेल्प करता है, तभी वो हमारी क्रिएटिविटी का साथी बनता है, उसका विकल्प नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रॉब्लम एआई में है या फिर उसके यूज़ करने के तरीकों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम हर छोटी चीज़ के लिए एआई से आंसर लेने लगें, हर आइडिया एआई से लेने लगें या हर डिसीजन उससे पूछने लगें, तो धीरे धीरे हम खुद सोचना कम कर सकते हैं और क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी एनिमी शायद एआई नहीं बल्कि हमारी अपनी कन्वीनियंस है। क्योंकि हमें जब हर चीज़ का आंसर इंस्टेंट मिल जाए तो सवाल पूछने की या कुछ चीज़ लेट मिलने पर हम उसकी वर्थ नहीं समझेंगे और ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बन सकती है। और साथियों क्रिएटिविटी में आंसर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। तो करेंगे इस पर आपसे और भी चर्चा पर इस ट्रैक के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। अगर आपको कोई क्रिएटिव काम करना हो और आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, पहला आप बैठकर खुद सोचें, मिस्टेक्स करें, बट दोबारा ट्राई करो, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं होगी, बट प्रैक्टिस मेक्स इट। और दूसरा, AI को बस एक कमांड दो आप और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो अब आप क्या चुनेंगे? शायद हम में से ज़्यादातर लोग कहेंगे सेकेंड ऑप्शन। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि टाइम सेव भी तो करना है। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि AI से काम आसान करवाइए, बट अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी को इतना ईजी मत करवाइए। मे बी आने वाले टाइम में AI से बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि AI के पास स्पीड है बट इमेजिनेशन नहीं। उसके पास बहुत डाटा है, लेकिन आपके पास तो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, डायरेक्शन तय करने वाला कोई तो चाहिए। और शायद क्रिएटिविटी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कभी एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना देता है, तो कभी कोई युवा कुछ क्रेजी आइडिया सोच लेता है, और यहीं से क्रिएटिव चीज़ों की तो शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से एक बात तो क्लियर है कि AI और क्रिएटिविटी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक अच्छे साथी बन सकते हैं। AI हमारे काम को आसान बना सकता है, इसमें स्पीड बढ़ा सकता है, नए आइडियाज़ दे सकता है, और कई बार हमें वो कुछ नया करने में हेल्प कर सकता है जो पहले मुश्किल लगता था। लेकिन क्रिएटिविटी में हमारा एक्सपीरियंस है, मिस्टेक्स है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा अपना नज़रिया है। और AI को क्रिएटिविटी का एनिमी मानने के बजाय उसे एक टूल की तरह यूज़ करना चाहिए। एक ऐसा टूल जो हमारी सोच को आगे बढ़ाए, हमारी जगह सोचने ना लगे, क्योंकि AI हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकता है, लेकिन उसमें से अपनी पॉसिबिलिटी चुनना हमारा काम है। तो AI का यूज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी सोच को आउटसोर्स मत कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, किसी शख्स की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी इमेजिनेशन होगी। वो इमेजिनेशन जो कहती है कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जो अभी तक हुआ ही नहीं। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के ये नेक्स्ट ट्रैक की ओर।

जिनका जीवन जितना सरल था उनकी सीख उतनी ही गहरी, और जिनका नाम आते ही उत्तराखंड की पहाड़ियां कैची धाम की तस्वीर मन में उभरती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीम करौली बाबा की, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी कहते हैं। 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में जन्मे बाबा नीम करौली का रियल नेम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर साधु का जीवन अपना लिया था। उनके जीवन से जुड़ा सबसे प्रमुख संदेश था कि प्रेम और सेवा, यानी आपके पास बहुत कुछ नहीं भी है तब भी आप किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सबसे, लेकिन क्या हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? मतलब हम चाहते सबसे हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन क्या रियल में हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? हम तो ये भी चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, लेकिन क्या हम किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं? और यही सवाल उनकी सीख को आज भी और प्रासंगिक बनाते हैं। नीम करौली बाबा का नाम कैची धाम से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित ये जगह आज भी उनके श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन कैची धाम की पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं, इससे जुड़ी है सबसे बड़ी भावना सेवा। खाने की व्यवस्था हो, लोगों की सहायता हो या जरूरतमंदों की मदद, सेवा का ये भाव उनके अनुयायियों के बीच आज भी दिखाई देता है। और यही बात से ये सीख मिलती है कि भक्ति अगर दिल से हो तो उसका असर हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। इसलिए सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करने से भी जीवन सार्थक बनता है। बाबा नीम करौली का जीवन सादगी से भरा था। वे हमेशा एक साधारण कंबल ओढ़े रहते थे। उनके जीवन से कोई कई मिरेकल्स जुड़े हैं, लेकिन वे खुद को कभी किसी चमत्कार का श्रेय नहीं लेते थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बाबा नीम करौली का प्रभाव केवल भारत तक ही नहीं सीमित रहा। कई देशों से महान विचारक और उद्यमी भी उनसे प्रेरित होकर भारत आए, जिनमें स्टीव जॉब्स 1970 में के दशक में आत्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा की खोज में कैची धाम आए थे, और मार्क जुकरबर्ग अपने कठिन समय में भी उन्होंने भी कैची धाम की यात्रा की, और रामदास हार्वर्ड के प्रोफेसर जो बाबा के शिष्य बने और उन्होंने एक फेमस बुक बी हियर नाउ लिखी। अब अगर हम नीम करौली बाबा के जीवन को आज के युवाओं की नज़र से देखें तो उनकी सीख और भी दिलचस्प लगती है। आज हम सक्सेस को अक्सर नौकरी, प्रसिद्धि या उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, और ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सफलता के साथ अगर संवेदनशीलता नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है। आप कितने सक्सेसफुल हो ये इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी सफलता से कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी लोग उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। और दोस्तों, नीम करौली बाबा की सीख हमें बताती है कि लाइफ हमेशा हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी सिचुएशंस, और कभी हमारे डिसीजंस भी। तो ऐसे में परेशान होकर सिचुएशन से लड़ते रहने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना और खुद को उसके अनुसार ढालना ही समझदारी है। यानी द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली टाइम वेयर यू एक्चुअली हैव एनी रियल इन्फ्लुएंस। तो साथियों, आज के इस छोटे से सेगमेंट में हमने बहुत सी बातें सीखी, तो अगर ये बातें आपके मन तक पहुंची हो तो उसे बस सुनकर मत छोड़िए, उसे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बना लीजिए। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी स्ट्रेस्ड पर्सन को दो पल ध्यान से सुन लेना, किसी नीडी की मदद कर देना, ये काम देखने में तो बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन किसी की लाइफ में इनकी जगह बहुत बड़ी हो सकती है। तो चलिए, आज नीम करौली बाबा के जीवन की सीख को अपने लाइफ में अपनाएंगे और उसका पालन भी करेंगे। तो इसलिए आज किसी के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, किसी को बिना किसी वजह के थैंक यू कह दीजिए, या किसी के मन को थोड़ा हल्का कर दीजिए, या फिर बस अपने आसपास थोड़ी सी सकारात्मकता बांट दीजिए। और दोस्तों, शायद यही किसी भी प्रेरणा की खूबसूरत बात है कि वो सिर्फ हमें बदल कर नहीं जाती, बल्कि हमारे जरिए किसी और की लाइफ को भी थोड़ा बेहतर बना सकती है। तो ये थे हमारे आज के प्रेरणापुंज नीम करौली बाबा।

तो दोस्तों, अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां कल के सवाल का जवाब मिलता है और आज का सवाल आपके सामने आता है। तो सबसे पहले, कल हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, और इसका सही जवाब है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना हुई थी साल 1986 में। और साथियों, आज का सवाल है, कौन सी देशांतर रेखा को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन सी देशांतर रेखा को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 8004926250, या फिर मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvnialt@gmail.com पर। तो साथियों, अब हमारी इस मुलाकात का वक्त भी धीरे धीरे में खत्म होने को है। आपसे टाटा बाय बाय कहने से पहले क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक ले लिया जाए।

सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। तो तब तक के लिए अपनी दोस्त सेजल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, जिसे
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया।

0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ल की वार्ता आधुनिक भारत और हिंदी। फैयाज खान परवाना से लोकभाषा कविता पाठ, ये भी हम आपको सुनवाएंगे पंचायत घर कार्यक्रम में। शाम 7:31 पर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता होगी समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा आशुतोष श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पंडित रामकृष्ण का क्लैरियोनेट वादन सुनवाया जाएगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण कार्यक्रम रात 10:00 होगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर रघुराज सिंह से की गई बातचीत, वर्षा ऋतु में पशुओं में लगने वाले रोग।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता, दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा प्रियंका मलिक का गाया दादरा और ठुमरी सुबह 7:31 पर। दोपहर 12:15 प्रेम जैन का गिटार वादन सुनवाया जाएगा और प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन आप सुनेंगे रात 10:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में एस के घोष के गाए भजन और गीत प्रसारित होंगे सुबह 9:50 पर। सुमधुर भाषिणी तिवारी के गाए भजन और गीत सुनिए शाम 7:45 पर। पंचम लाल और साथी, प्रतिमा मिश्रा और विष्णु राजा के गाए लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:30। इसी क्रम में छेदी लाल के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। दोपहर 12:30 प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम होगा। इसमें शुभी मालवीय से कंचन श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा महिलाएं सशक्त कैसे बने। NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:15। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अवधेश चंद्र यादव की वार्ता डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी और इसके अलावा विद्यानंद त्रिपाठी से रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर नीलेश मिश्र की वार्ता होगी भारतीय संस्कृतौ नारीणाम स्थानम। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम का प्रसारण होगा 9:30। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ। तू आशिक
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो राम राम।
1: हमकार दिनेश भैया।
0: हाँ सुमेर भैया।
1: भाई हर देश का समाज का एक बोली भाषा हो तब वह पहचान बना था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखा सितंबर महीना में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता था 15 दिन का।
0: हाँ हाँ
1: तो भाई कुल बात ही रहा था कि वह भाषा से जोने में हम तू पले बढ़े, बड़ा भय समाज से जुड़े, देश से जुड़े,
0: जी जी
1: ओकर सम्मान करें, ओकर मूल तत्व का पहचाने और आगे बढ़ें।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: भाई देखा हिंदी जोन भाषा बाटे ये अपने देश में बहुत बड़े भूभाग में बोली जाए वाली भाषा बाटे।
0: जी जी

0: और आज से ना ही भैया स्वतंत्रता आंदोलन से देखा तो एक इतिहास रहा बाटे, नारा का जोन गठन भा वो हिंदी में भा, देश में जनजागरण का कार्यक्रम चला तो हिंदी भाषा ओमा पुल बनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और भाई चाहे उत्तर का बात हो चाहे पश्चिम का, पूरब का, दक्षिण का, कुल जगह पे हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में उभर के सामने आई।
1: तुम कही तो भैया देखा सुमेर एक बात जाना ना कि जोन आपन राष्ट्रभाषा हो,
0: हाँ हाँ
1: तो हम कही थे कि जगह जगह एकर मान्यता भी दे के चाहिए और एका माने के चाहिए भैया रंग के।
0: बिल्कुल
1: विदेशी भाषा तो मान लीजिए ठीक है, जानब कोनो नुकसान देह ना ना, लेकिन आपन मातृभाषा के भुलाव बहुत अच्छा नहीं ना।
0: नहीं अच्छा नहीं भाई, बहुत नुकसान दे हम कहते देखा जोन परंपरा परिपाटी बाटे ना,
1: जी जी
0: ये भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जा था और जोन हिंदी का मूल का पहचान बाटे
1: जी जी
0: है। अब तमाम शब्द ऐसा ना है जेकर भाई कोनो और भाषा में अनुवाद जल्दी ना मिलत या गले के नीचे या काने के नीचे ना उतरत, तो भाई अपने भाषा का। और देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र भैया कितना बढ़िया बात करें, निज भाषा भाषा।

0: ते देखा जोन परंपरा परिपाटी बाटे ना
1: जी
0: ये भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जा था और जोन हिंदी का मूल का पहचान बाटे
1: जी जी
0: हैं। अब तमाम शब्द ऐसा ना है जेकर भाई कोनो और भाषा में अनुवाद जल्दी ना मिलत या गले के नीचे या काने के नीचे ना
1: हाँ हाँ
0: उतरत, तब भाई अपने भाषा का। और देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र भैया कितना बढ़िया बात करें, निज भाषा भाषा है कुल भाषा के मूल, समझत है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हिंदी का सम्मान करें, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, बोलें चालें, पहचान करें, समझत है ना।
1: एक बात और
0: कहो
1: सुमेर भैया, देखा जो किसान भैया हर एक खेती किसानी से जुड़ा है, तो एक सरकार का योजना बा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एक उद्देश्य यही है कि भाई उनके खेती बाड़ी अच्छी होए। और ये 2015 में
0: हाँ
1: समझा स्वस्थ धरा खेत हरा
0: हाँ
1: के नारा
0: हाँ
1: के
0: भाई,
1: साथ,
0: माटी अगर बढ़िया रहे तो खेत
1: हाँ
0: बढ़िया रहे।
1: स्वस्थ धरा तो खेत हरा के नारा के साथ शुरुआत किया गया। एम ने भाई देखा माटी के उर्वरता की क्षमता और माटी के उत्पादन की क्षमता के बारे में जांच करके, और उर्वरक कौने मात्रा में दिया जाए न दिया जाए, एक संचित मात्रा किसान भैया हरन को बतावे के व्यवस्था बा, और एक लाभ भैया हरन के ले चाहिए। हम कहते हमें बहुत दाम नहीं लागत।
0: कुछ नहीं हो, माटी के जहाँ तक देखा सेते में होता। और सबसे
1: हाँ
0: बड़ी बात दिनेश ही बाटे कि भाई जैसे हमरे तोहरे शरीर में अगर कोरो बेरामी हो गया ना ही बेरामी भ, तो डॉक्टर भैया रे खातिर के समय समय भाई जांच करावत रहा
1: बिल्कुल
0: ताकि कोनो
1: बिल्कुल
0: बेरामी हो तो पता चल जाए और समुचित इलाज हो जाए।
1: बिल्कुल
0: तो यहाँ तरीके से जो कार्ड बनत भैया ना, तो साल दर साल माटी का कुछ ताव तरक बा, का कुछ होकर मांग बाटे, का ज़्यादा बा का कम बाटे,
1: हाँ
0: एकर कुल के जांच पड़ताल के कार्ड पे लिख दीन जात है।
1: बिल्कुल
0: तब पूरा का पूरा इतिहास रहा था, दोबारा फिर गया तो भाई देखा जाए तो कितना घटा कितना बढ़ा।
1: बिल्कुल
0: तो ई माटी का संरचना का बनाए रखे मददगार बाटे। तो यहाँ भाई कार्ड जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बाटे, इससे कुल पंच भैया हरे किसान भैया बहनी हरे जुड़ें और खेते के मजबूत रखें। खेत हरा तो
1: धरा स्वस्थ
0: खेत
1: खेत स्वस्थ स्वस्थ धरा तो खेत हरा।
0: हरा तो
1: हम
0: भाई
1: कहे
0: हरा भरा खेत रहा ही
1: जी जी
0: तो अच्छा लगे।
1: भाई एक बात जाना ना कि हम कहे थे कि एक यहाँ योजना से किसान भैया हरे अगर जुड़ जाए ही तो सबसे बड़ा लाभ तो ये बा कि असंतुलित जो उर्वरक का प्रयोग करे थे उसे बचाव हुई,
0: हे
1: तो
0: भैया,
1: ओमें लागत कम लागी और उत्पादन बढ़िया हुई,
0: और माटी भी बनी रहे
1: माटी भी
0: अच्छी,
1: बनी रहेगी।
0: तो
1: हम
0: बहुत
1: कहे
0: बढ़िया बढ़िया बात
1: तो
0: रही
1: आज
0: भाई।
1: पंचायती में काका ले आया है भैया।
0: देखा भाई आज जोन बात कही होत रही कि आधुनिक भारत और हिंदी
1: हाँ
0: ते पैठी वार्ता बाटे पंचे सुनही और लोक भाषा कविता पाठ का दिन है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: भैया देखा फैयाज खान परवाना का कविता कविता ही बाटे पंचे सुनी है। मुल्क रे पहले हम कहा था शैलेश कुमार शर्मा
1: हाँ हाँ
0: का गावा विकास गीत बाटे पंचे सुन ले तो बात कही
1: सुना
0: हो।
1: दो सुना दो।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हाँ सुमेर भैया, गीत गाने तो हो गए हो।
4: हाँ बहुत बढ़िया रही है भाई। अब जो बात कही होत रही भाई कि आधुनिक भारत और हिंदी का कुछ महात्म बाटे, कैसे आधुनिक भारत में हिंदी अपन विकास करता है, योगदान करता बा, तो प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ला भैया पंचन से कुछ बतावता है, कहा सुने गुने भाई।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
5: आज आधुनिक भारत और हिंदी की बात हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं मनुष्य का जन्म करोड़ों वर्ष पहले हुआ, वह रहस्यमय हो सकता है, लेकिन मनुष्य ने लिपि और भाषा की

की भाषा संकेत और चित्रों से चलकर देवनागरी लिपि तक आई, लेकिन लेखन की परंपरा बाद में विकसित हुई, और वह भी भोजपत्रों द्वारा, शिलालेखों द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने के बाद पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पाठ परंपरा और सूत परंपरा के चलते हमारे पौराणिक ग्रंथों को सहेजा गया। धीरे धीरे आपने देखा होगा सरहपाए और पुष्य यानी हिंदी का विकास 1356 वर्षों का, और इस 1356 वर्षों में हिंदी ने कई दिशाएं समायोजित की। उदाहरण के तौर पर विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना, ये परंपरा हमारी हिंदी के माध्यम से आई। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ 14 राज्य थे, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे वे भाषाएं 8वीं अनुसूची में बढ़कर 22 हो गई, और 22 भाषाएं होने के बाद राज्यों की संख्या बढ़ी। इसलिए यूपीएससी में अंग्रेजी अनिवार्य और साथ में भारतीय भाषाएं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोगों में अंग्रेजी तो अनिवार्य है ही, वहाँ बाद में वहाँ की रीजनल भाषाएं अनिवार्य हैं। हिंदी का विकास तो सोशल मीडिया के चलते हो रहा है, कविता, कहानियाँ, नाटक, ये तमाम चीज़ें लिखी जा रही हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चों में जिस तरह से हिंदी का विकास होना चाहिए वह स्वरूप थोड़ा घटा है। घटने के साथ ही साथ जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे रचनाकार, हमारे कवि, हमारे लेखक खूब लिख रहे हैं, खूब बिक भी रहे हैं, यानी हिंदी का एक मार्केट भी है। लेकिन मार्केट के साथ हमें यह देखना है कि चाहे यूपीएससी हो या 28 राज्य लोक सेवा आयोगों की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं का मीडियम भी कहीं ना कहीं हिंदी होना चाहिए, और उसके ऑप्शन में प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपको क्योंकि 16 राज्य ऐसे हैं जो अपनी भाषा में बात करते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे हिब्रू, मतलब इजराइल की भाषा हिब्रू है, चाहे टर्की को आप देख लीजिए, चाहे फ्रांस को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए। मित्रों, राष्ट्रभाषा जो होती है वह राष्ट्रभाषा कहीं न कहीं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक परिवर्तनों को भाषा या लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। मित्रों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस हिंदी को 1911 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1913 में एसएनडीटी विश्वविद्यालय, 1920 में गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद बनारस के विश्वविद्यालयों में 1924 के बाद विभाग खुले हैं, आज हम 100-150 वर्षों में जिस तरह से हिंदी का विकास कर रहे हैं और वर्तमान में सरकार का जो पूरा का पूरा प्रयोजन चल रहा है उससे लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। लेकिन केंद्र सरकार के कार्यालयों में मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक और अर्धवार्षिक या वार्षिक रिपोर्टें तो हिंदी में जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ज़्यादातर कार्य अंग्रेजी में होता है। हमें यह भी देखना है कि विद्यार्थियों में एक ही भाषा और एक ही मीडियम की किताबें और शिक्षा दी जाए जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो जाए। आप देखेंगे हिंदी में वाणिज्य, तकनीकी, चिकित्सा, नैनो टेक्नोलॉजी, आईसीटी की किताबें बहुत कम उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने बहुत सारा प्रयत्न किया है लेकिन टर्मिनोलॉजी इस तरह की है जिससे ज़्यादातर लोग अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सरकार तो हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है नई दिल्ली में बनाया, और वैज्ञानिक और तकनीकी आयोग हर वर्ष हर क्षेत्र के शब्दों को अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित करते हैं, लेकिन लोक जीवन में या आम जीवन में उन शब्दों का प्रयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर तकनीकी के द्वारा जो हिंदी के शब्द आ रहे हैं वे संस्कृत निष्ठ हैं। डॉक्टर रघुवीर जब विदेश गए और वहाँ अंग्रेजी बोल रहे थे तो बच्ची आई और बच्ची ने अपनी माँ से कहा, कहा क्या इनकी मातृभाषा नहीं है? माँ ने आकर के डॉक्टर रघुवीर से पूछा और पूछने के बाद उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जैसे ही इंडिया आए और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग वगैरह की जो स्थापना हुई उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया। तत्सम हो या तद्भव हो,
आप देखिए।

अगर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर सहज शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो हिंदी सर्वसुलभ हो जाएगी, लेकिन जहाँ तकनीकी या ई ट्रांसलेशन के माध्यम से आप उसका विनियोग करेंगे वहाँ हिंदी कठिन हो जाती है। कई बार यह देखा जा रहा है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्द समझ में आते हैं और हिंदी के शब्द समझ में नहीं आते हैं, ये ई ट्रांसलेशन की तकलीफ है। ऐसी विषम परिस्थिति में हिंदी दिवस के पूर्व दिनों में हम अपेक्षा रखते हैं कि सरकार को धीरे धीरे CBSE या NCERT के ही पाठ्यक्रम को समग्र भारत में लागू किया जाए, अदरवाइज धीरे धीरे प्रादेशिकता बढ़ रही है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी का पूरा प्रचलन नवजागरण के कारण हुआ था, संपर्क भाषा बनी थी, और जितने भी राजनेता थे चाहे दक्षिण के हों चाहे पूरब के हों चाहे उत्तर के सारे राजनेता यह कहते थे कि भाई हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। मित्रों, कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी का व्यामोह छोड़ना पड़ेगा और अंग्रेजी का व्यामोह छोड़ करके हम अपने बच्चों को अपनी भाषा में अगर शिक्षा देंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। यदि भारतेंदु के शब्दों में कहें तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अब आप कहेंगे कि ये निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और प्रादेशिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मित्रों, एक भाषा अगर गायब होती है तो एक भूगोल गायब होता है, एक देश गायब होता है। आप देखेंगे कि जहां अयुड रिलिक या पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी गई वहां आज संस्कृत गायब हो गई। यानी जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे उस समय पर हमने संस्कृत के द्वारा अखंड मंडलाकारम की बात की, जम्बूद्वीप की बात की, लेकिन आज स्थितियाँ क्या हैं कि हमारी सीमाएँ संकुचित होती जा रहे हैं। सरकार का, वर्तमान सरकार का प्रयास सराहनीय है, लेकिन सराहनीय होने के साथ ही साथ संसदीय कार्यवाही या ऑडिट के क्षेत्र में या विज्ञान तकनीकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हिंदी का विनियोग किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे राष्ट्रीयता को एक नया आयाम मिले। यानी भारत की जो पुनर्खोज है, यानी जब मगध, मध्य देश, द्रविड़ देश, गांधार और पांचाल था और एक भाषा थी संस्कृत, उस तरह का अगर हिंदी का वर्चस्व बनता है तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और बच्चों में, संरक्षकों में, माता पिता में यह ललक पैदा होनी चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा राष्ट्रीय भाषा में पढ़ रहा है, जैसे जापान का बच्चा पढ़ रहा है, जैसे चाइना का बच्चा पढ़ रहा है, जैसे इजराइल के बच्चे हिब्रू भाषा में पढ़ रहे हैं, जैसे फ्रांस और जर्मन के अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ रहे हैं। मित्रों, भाषा कहीं न कहीं धर्म, संस्कृति, सभ्यता, समाज, परिवार की दोतन भी है, अभिव्यक्तिकरण उसी में होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आप कहते हैं कि वैष्णव, आप देखेंगे नरसिंह मेहता का एक गीत है, वैष्णव जन तेने रे कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये नरसिंह मेहता लिख रहे हैं। तुलसी खुद लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब आप देखिए, ये जो संवेदनाएं हैं, यह संवेदनाएं एकदम बिल्कुल अंत्योदय तक पहुंचनी चाहिए, यानी भाषिक संरक्षण। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदी को का पूरा प्रकोष्ठ गृह मंत्रालय को दिया गया है, और गृह मंत्रालय की यह जवाबदारी भी है, और गृह मंत्रालय कई सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, आपने ध्यान दिया होगा 1975 से शुरू हुआ था और कई देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहे हैं। यानी प्रवासी साहित्य, आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदी केवल हिंदी प्रदेशों में ही नहीं लिखी जा रही है, बल्कि विश्व के तमाम देशों में ऐसे ऐसे लेखक मिलेंगे, कवि मिलेंगे जो हिंदी का उत्थान कर रहे हैं, और उत्थान करने के साथ ही साथ हमारी एम्बेसी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, या विदेशों में भी हिंदी पढ़ाने वालों की मांग बढ़ी है। मित्रों, कॉरपोरेट सेक्टर हो या फिर आप देखेंगे निर्यात और आयात में, मार्केट हो, मार्केट की भाषा में भी हिंदी कहीं ना कहीं संपर्क का काम कर रही है। यानी राष्ट्रीयता हमारी बलवती बने, इसका हमें ध्यान रखना है। ऐसी विषम परिस्थिति में भारतेंदु खुद कहते थे

0: सत्व भारत गहे, यानी अपनी भाषा मातृभाषा, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा के साथ ही साथ समूह की भाषा के साथ एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो राष्ट्र को रिफ्लेक्ट करे, जैसे संस्कृत करती थी। राजभाषा अधिनियम की बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी की जो व्याप्ति बढ़ी है उस व्याप्ति के में कहीं न कहीं वर्तमान सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे कि घर में भी माताएं, मातृभाषा अगर हम कहते हैं तो माताएं जो हैं आजकल बच्चों को अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बचपन से वो करती हैं। मित्रों, माताओं से भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम हिंदी के शब्द या कम से कम संस्कृत के शब्द अगर इनका आप विनियोग करेंगी, प्रयोग करेंगी, तो बच्चा जो है मातृभाषा में और निपुण होगा। मित्रों, संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी, जबकि हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। यहाँ परसर्ग, कर्ता, चिन्ह वगैरह सब अलग होते हैं, लेकिन हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये जो विशिष्टता है और भाषाओं में नहीं मिलेगी। आपने ध्यान दिया होगा, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, क्रियाओं का ध्यान दिया जा रहा है, एक वचन बहुवचन का ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि हिंदी में दो वचन नहीं होते हैं। यानी ये एक वैशिष्ट है हिंदी का, जो बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के बच्चों को सिखाना चाहिए। मित्रों, आप देखेंगे भारतुंड के अलावा 1912 में जब भारत भारती लिखी गई थी, उस समय पर मैथिली शरण गुप्त ने खुद हम क्या थे क्या हो गए इस तरह का आह्वान करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक लेखक, एक कवि अपनी भाषा में तो लिख रहा है, लेकिन क्या शैक्षणिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर उसका विनियोग, उसका चलन हम कर रहे हैं? मित्रों, यह अस्मितामूलक समय है। अगर राष्ट्र है, राष्ट्र की अस्मिता है, उसकी भौगोलिकता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस राष्ट्रभाषा में अभिव्यक्त करना होगा। आप देखेंगे वेदों में आता है, शांति है आपो, शांति है औषधय, शांति है वनस्पतय। क्या बुरा है पर्यावरण, जड़ और चेतन को साथ लेकर चलना? ये जो वैशिष्ट है वो हिंदी में है, इसीलिए हिंदी एक वरेण्य भाषा है और संस्कृत के काफ़ी करीब भी है। मित्रों, ऐसी स्थिति में मैं सबसे अपील करूंगा कि कहीं न कहीं सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक विनियोग इस तरह से करें जिससे अयम निजह परो वेति गणना लग चेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुम्बकम्, यानी समग्र विश्व ही हमें अपना कुटुम्ब जैसा प्रतीत हो। इन्हीं विशिष्टताओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।
1: हाँ सुमेर भैया,
2: हाँ भाई,
1: देखा भाई आधुनिक भारत और हिंदी,
2: हाँ
1: का संबंध बा और का उपयोगिता बा, एक बारे में डॉक्टर प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ल भैया बतावत रहे। हम कहते कि भैया देखा जितना बढ़िया बताएं, ये केवल सुनने की बात नहीं ना, बल्कि अपने
2: भैया का महसूस करें, गर्व करें अपने भाषा पर और का आगे बढ़ावें। और दिनेश भैया, देखा लोक भाषा कविता पाठ के दिन बाटे
1: जी,
2: तो का कुछ लोक जीवन में हो रहा बाटे
1: जी, जी।
2: समझता है ना, पूरा बारह मासी तो होत है लोक जीवन। फैयाज खान परवाना भैया देखा कुछ कविता ही करता है, का पद झरे सुने भाई?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना दो।

माँ। और एक छंद भैया भगवान राम जब केवट का नाव मांगन तो कहा थिन कि यहू बाढ़िया है नदी आए तनी बतिया मनो मामा खले काया है यहू।

0: बरे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: हाँ भैया दिनेश, ये तो देखा भैया आज खान परवाना भैया रहे ना, कितना बढ़िया कविता ही सुनाए। और भाई देखा पौराणिक भी रहा, सामाजिक भी रहा, तो कहा का मतलब ये बात है भाई, जो उन लोक जीवन होत है, ये पीढ़ी परंपरा संस्कृति सबका सम्मान करत भे, लोक में एका आत्मसात करत भे, आगे बढ़त है, पीढ़ीन का सींचत है,
2: बिल्कुल
1: पीढ़ी
2: बिल्कुल
1: के एक शिक्षा देत है कि भाई यह तरीके से जीवन अगर लोक में समाज में लेके चल गया तो अच्छा रहे, सम्मान बढ़े। एक बात देखा भाई, पंचन से चलत चलाओ तो कहा कहा कि भाई बारिश हुई रही बाटे, फसल भी अब की बार बढ़िया बार, रोग ब्याध ना लागता है, मुल्तनी देखे रहा है भाई सवेरे संझा टहर के खेते के डाणे मारे कि अगर रोग ब्याध लागे का संभावना हो, कहा जिससे इससे फसल बढ़त जात ना, तो देखा धान में खास तौर पर खैरा रोग या मक्खी लागे लागा थी, तो ओकर तनी देखे सवाचे रहें, अगर कोनो ऐसा संभावना बने तो ओकर भाई समय से वैज्ञानिक भैया से मिल के ओकर पहचान करके और प्रॉपर अच्छे
2: उपचार कर
1: तरीके
2: लें।
1: से ओकर उपचार कर लें।
2: एक
1: और
2: बात
1: भाई
2: और सुमेर भैया,
1: हाँ
2: कि देखा बरसात के बाद तमाम गांव में, तमाम शहर के मोहल्ला में, हाँ, पानी पानी के बढ़ाव हो गया, रहा
1: हाँ हाँ
2: घर में पानी घुस गया, रास्ता में घुस गया, लेकिन धीरे धीरे वो पानी
1: हटाता है अब।
2: हटत हुआ, वो हट गया। तो उसमें कहा है कि अब यहाँ समय में हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखे के चाहिए।
1: साफ सफाई करें भाई, हम कहते हैं वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दें ताकि भाई कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाए और कोई नुकसान ना हो। तो पंचन बिला लीजिए। अच्छा पंचो,
2: राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: पहली बार हुआ तुम इतने दिन की कहा, मैं ढूंढता ही रहा
0: कहा।
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों के लिए जताया भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों के बीच हुई चर्चा। बागपत में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 24 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। वार्ड लेवल रैंकिंग में भी राजधानी का वार्ड 70 रहा अव्वल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति की समीक्षा कर राहत और बचाव कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा व देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: शारदा नदी में बनबसा बैराज से आज 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। देवहा

0: नदी में डिस्चार्ज 11,000 क्यूसेक था। इससे पूरनपुर सदर कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस सरदा क्षेत्र में फसलें व संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट करके प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा है। लगातार बरसात होने से निचली बस्तियां भी जलमग्न है और आज 8वीं तक के स्कूल बंद रहे। जलभराव के कारण माध्यमिक विद्यालयों में अगले 3 दिन का अवकाश घोषित करने की मांग आज शिक्षक संगठनों ने जिलाधिकारी से की है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने मॉनसून के बाद अक्टूबर से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर रोड रेस्टोरेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी अभियान की तैयारियां समय से पूरी कर लें। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने आज लखनऊ में बैठक की। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पहले से संचालित 25 मार्गों के अलावा बिहार ने 14 नए मार्गों पर परिवहन की बसों के संचालन का प्रस्ताव दिया है।
2: 25 रूटे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पहले से संचालित था और उसका एक्सटेंशन करने का बात थी 10 साल के लिए, और 14 नए रूट बिहार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। कुछ उसमें हम लोगों ने और भी अतिरिक्त रूट बढ़ाने के लिए कहा है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, लाखों लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हैं, तो सबके आवागमन की सुविधा रखना हम सबका दायित्व है। इस पर हम सब लोगों ने आज एक एक बिंदुओं पर निर्णय किया है।
1: बागपत में देर रात हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हो गए। हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा गांव टोल के पास हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि श्रद्धालुओं से भरे सवारी वाहन में 30 से अधिक लोग सवार थे जो राजस्थान से लौट रहे थे और बदायूं की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है।
3: दुर्घटना में लगभग 24 व्यक्ति घायल बताए गए हैं और इनमें से कई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार हेतु अलग अलग सीएचसी में भेजा गया, जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा उपचार हेतु हायर सेंटर जो हमारे मेरठ में है वहां पर रेफर किया गया। अब तक जो प्राप्त सूचना हुई है उसमें 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। ये सभी लोग बदायूं जनपद के थे, राजस्थान में पूजा अर्चना के लिए गए थे, 5 दिन बाद पूजा अर्चना पूरी करके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना हुई है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 9 सितंबर को वाराणसी से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष का अभियान 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। इनमें आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही तथा बच्चों के विकास के लिए पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और शिक्षा शामिल है। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर

पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।

0: आबादी वाले शहरों की कैटेगरी एक में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने चौथा, गाजियाबाद ने नवां, कानपुर ने 11वां, प्रयागराज ने 13वां और मेरठ ने 22वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी एक में राजधानी लखनऊ के वार्ड 70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कैटेगरी दो में प्रयागराज के वार्ड 31 ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी, मुरादाबाद और नोएडा टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उत्तर प्रदेश को मिली इस उपलब्धि पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ शहर केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लखनऊ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष मलखान सिंह ने आज पीआरवी वाहन रवाना किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, भूमि अर्जन, पुनर्वासन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
2: जैसा कि आप सभी को जानकारी है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जा रहा है और इसके साथ ही मीडिएशन 3.0 का कार्यक्रम भी प्रचलित है। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय में पहुंचकर मध्यस्थता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों के लिए जताया भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों के बीच हुई चर्चा। बागपत में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 24 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। वार्ड लेवल रैंकिंग में भी राजधानी का वार्ड 70 रहा अव्वल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता, समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी।
1: एक समय था जब हिंदी कविता में रस के अभाव को लेकर बहुत विवाद हुआ था, वैसे ही आज के समय में कथा साहित्य में लालित्य के अभाव को लेकर भी कुछ विवाद जब तब उठते देखे जाते हैं। कविता में रस को कसौटी मानने के विरुद्ध तर्क यह दिया गया था कि रस की अवधारणा एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जिसमें बल संयोग समाहिति या संगठन पर है, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। पर आज हमारा युग विघटनात्मक अनुभवों का युग है, मूल्यों का विघटन, पारिवारिक संबंध भावनाओं का विघटन, व्यक्तित्व का विघटन आदि सब हमारे आधुनिक समाज में नई तरह की जटिलताओं के कारण हमारे अनुभव का अंग बन रही हैं। यहाँ कुछ भी संगठित होने से पहले विघटित होने के लिए अभिशप्त है। ऐसे में आनंद से ज़्यादा विवाद हमारे अनुभव में जब आता है तो आनंद के स्थान पर विषाद अधिकांशतया घेरे रहता है। रस और लालित्य की अवधारणाएं आनंद मूलक अवधारणाएं हैं।

हमारे रोज़मर्रा के अनुभव अब उतने आनंदमूलक तो रह नहीं गए हैं। इसलिए प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि कविता में रस और कथा साहित्य में लालित्य की रक्षा की जाए या उस यथार्थ को चित्रित करने का संकल्प लिया जाए जो त्रासद है, विडम्बनापूर्ण है। त्रासद और विडम्बनापूर्ण यथार्थ को रसात्मक और ललित कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि लालित्य के लिए कल्पना की ज़रूरत अनिवार्यतया पड़ती है, लेकिन आज की कथा विधा में यथार्थ की अभिव्यक्ति पर जोर रहता है। कल्पना के लिए यथार्थ की बलि नहीं दी जा सकती है। कथा विधा के लिए पहली प्रतिज्ञा ये होती है कि वह यथार्थ को सामने लाए। पर फिर याद करें प्रेमचंद को। कला में यथार्थ की समाई के बारे में प्रेमचंद ने लिखा था कि कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं। उसकी खूबी यह है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो। इस कथन

कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि लालित्य के लिए कल्पना की ज़रूरत अनिवार्यतया पड़ती है, लेकिन आज की कथा विधा में यथार्थ की अभिव्यक्ति पर जोर रहता है। कल्पना के लिए यथार्थ की बलि नहीं दी जा सकती है। कथा विधा के लिए पहली प्रतिज्ञा ये होती है कि वह यथार्थ को सामने लाए। पर फिर याद करें प्रेमचंद को, कला में यथार्थ की समाई के बारे में प्रेमचंद ने लिखा था कि कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं। उसकी खूबी यह है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो। इस कथन पर विचार करें तो स्पष्ट है कि कोई भी रचना सिर्फ यथार्थ को हूबहू प्रस्तुत कर देने से रचना नहीं बनती। रचना सिर्फ प्रस्तुति नहीं होती, रचना एक निर्मिति होती है। यानी किसी अनुभव को सिर्फ यथातथ्य पेश कर देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। अनुभव को भाषा और शिल्प में इस तरह फिर से रचना होता है कि वह जो अनुभव के सामान्य स्तर पर प्रकट नहीं हो पा रहा है वह रचना अनुभव के रूप में प्रकट हो जाए। माना जाता है कि उपन्यास विधा अपनी पैदाइश से ही छिपाने की कला के विरुद्ध प्रकट करने की कला का मुहिम छेड़ते आया। लेखन कर्म एक प्रकार का उद्घाटन कर्म, रिवीलिंग एक्टिविटी होता है। जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है उसकी आड़ में कितना कुछ अनदेखा रह जा रहा है उसे रिवील कौन करेगा? साहित्य ही करेगा ना। तो उपन्यास इसी प्रतिज्ञा के साथ आया कि वह रिवील करेगा। सत्य कितना भी कुरूप हो, कितना भी असुंदर हो, तब भी उसको रिवील करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा समाज, हमारा पाठक वर्ग उससे परिचित हो जाए और वास्तविकता को देखते हुए वो एक नए प्रकार का सौंदर्य बोध विकसित करे। और ये जो रिवीलिंग एक्टिविटी है इसकी सफलता सिर्फ इतने से नहीं होती कि हमारा यथार्थ बोध कितना प्रबल है, बल्कि उसके लिए यह भी ज़रूरी होता है कि कल्पनाशीलता से काम लेने की तमीज़ भी लेखक की बनी रहे। कल्पनाशीलता एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्यक्ष अनुभव को भी जब रचना में लाती है तो उसमें कुछ नया ले आया जाता है। पाठक को लगता है कि उसने जो देखा वो अधूरा देखा, उसको पूर्ण देखना ही उसके लिए सुख का विषय होता है। और यह भी है कि यह जो रिवीलिंग एक्टिविटी है यह पाठक को कई बार आश्वस्त करती है और इसीलिए सुखद भी होती है कि जो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाया था उसको देखने की दृष्टि उसी रचना के माध्यम से मिल गई। ये भी एक प्रकार का आनंद का विषय होता है। यानी अगर स्थितियाँ दुखद भी हैं, स्थितियाँ त्रासद भी हैं, तो उनके त्रास और उनके दुख को रचना में प्रकट इस तरह किया जाता है कि रचना पठनीय बनी रहे, अपठनीय ना हो जाए, उबाऊ ना हो जाए। आज कथा विधा में अगर लालित्य के लिए कोई अवकाश बनाना है तो दो शर्तें निभानी होंगी। एक तो यह कि उसके अर्थ को निरे शास्त्रीय अर्थ से बाहर लाकर उसकी नई व्याख्या करनी होगी, और दूसरी यह कि यथार्थ की अभिव्यक्ति में कल्पना के सहयोग की संभावनाएं तलाशनी होंगी। कल्पना में ही तो नवीनता होती है, वरना जो कुछ है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो देख रहे हैं उसको कल्पना के ज़रिए आकर्षक बनाना, पाठक को अपनी ओर खींचने का गुण उसमें लाना, यह भी एक प्रकार का लालित्य है। लालित्य का संबंध पठनीयता और संप्रेषणीयता से भी माना जाना चाहिए। बौद्धिकता का अतिरेक आज देखने में आ रहा है। दिमाग से ज़्यादा, विचार से ज़्यादा रचना में हम पाठक को देने के लिए जो तत्व रखते हैं वो कई बार दिमाग के स्तर पर ही रह जाते हैं, हृदय में उतर नहीं पाते। बौद्धिकता का अतिरेक रचना में जटिलता और दुरूहता ले आता है। सामान्य पाठक को इसीलिए ऐसी रचनाएं उबाती हैं, और जहां ऊब पैदा हो
वहाँ लालित्य कैसे

संभव हो सकता है। पाठक किसी रचना को निरी तथ्यात्मक जानकारी के लिए नहीं पढ़ता, जानकारी तो वो किसी अन्य स्रोत से भी पा सकता है। रचना में आकर्षण के लिए उसकी भाषा और शैली में कुछ ऐसा होना चाहिए कि रचना पाठक को शुरू से आखिर तक बांधे रखे, रमाए रखे अपने में। लालित्य तत्व ऐसे आकर्षण को संभव बनाता है। इसी तत्व के बल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा पाठक को अपने में रमा लेते हैं। वहाँ जो समय आता है वह केवल सामयिक घटनाओं पर पांव रखकर नहीं आता, कथानक अतीत से लिए जाते हैं, पर द्विवेदी जी उन्हें अपनी शैली में कुछ ऐसे प्रश्नों से जोड़ देते हैं जो हमें अपने समय के प्रश्न मालूम पड़ने लगते हैं। इसका कारण है वह लालित्य भाव जो द्विवेदी जी के पांडित्य भाव को रोचक और आकर्षक बना देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लालित्य को कथाविधा में रुचि पैदा करने वाले तत्व के रूप में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई भी उपन्यास इस उद्देश्य से नहीं लिखा जाता कि वो अपने समय का निरा घोषणा पत्र ही हो, उसमें कल्पना तत्व के जरिए तथ्य को कथ्य में रूपांतरित किया जाता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को जहाँ भी रचने का निर्णय लिया उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उसमें कल्पना के बल पर उसको पुराने समय से मुक्त करके नए समय से जोड़ा जा सकता है। यानी कल्पनाशीलता ही वो तत्व है जो दो समयों के अंतराल को पाटता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को गप कहा था, तो इसीलिए कि निरी तथ्यबद्धता को वो किसी रचना का गुण नहीं मानते थे। द्विवेदी जी इतिहास से कथा का बीज लेते थे लेकिन पल्लवित करते थे उसे कल्पना के माध्यम से। यूँ अपनी रचनाओं में वे लालित्य के लिए अवकाश बनाते थे। आज जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें इस अवकाश के लिए बहुत कम कोशिश की जाती है। लगता है कि जैसे सब कुछ जो सूचना माध्यमों से हमें मिल रहा है वो रचना में रख दिया जाए। सूचना का ये आधिक्य कई बार संवेदना पर एक ऐसे दबाव की तरह आता है कि पाठक को उसमें मन रमाने के तत्व नहीं मिलते। द्विवेदी जी ने जिस शैली का विकास किया था अपने तरीके से, वो उपन्यास के लिए नया था, कथा विधा के लिए नया था। बाद में इसी शैली का विकास मनोहर श्याम जोशी और उदय प्रकाश की रचनाओं में होता मिलता है। उदय प्रकाश ने कहीं लिखा भी है कि उपन्यास वह विधा है जिसमें यथार्थ सीमित और अयथार्थ यानी कल्पना असीमित है। इसका अर्थ यह नहीं कि रचना यथार्थ विरोधी हो जाए, बल्कि यह है कि कल्पना का ऐसा उपयोग किया जाए कि कल्पना स्वयं दूसरा यथार्थ बन जाए, या कहें कि कल्पना प्रत्यक्ष यथार्थ की पूरक बन जाए। ये कल्पना की रचनात्मकता का गुण है। कल्पना भी रचनात्मक होकर के हवाई नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी हुई रचना में आए तो उससे एक प्रकार का लालित्य रचना में पैदा होता है। बहुत सी कहानियाँ या उपन्यास आज इस तरह लिखे जाते हैं कि उनमें वही यथार्थ आता है जिसे हम खुद अपनी आँखों पहले ही देख चुके होते हैं। ऐसे में रचनाएँ यथार्थ का पुनर्प्रस्तुतिकरण मात्र बनकर रह जाती हैं। उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं मिलता हमको कि हमें लगे कि यह निर्मिति हुई है। प्रस्तुति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है निर्मिति। महत्वपूर्ण ये है कि कैसे कोई रचनाकार जो उसे प्रस्तुत मिला है अपने जीवन में उसे पाठक के सामने इस तरह रखे कि पाठक को एक आँख मिल जाए वह सब देखने की जो कल्पना के जरिए लेखक ने रचा था। यथार्थ को एक नवरचित रूप देने का कार्य करना मौलिक प्रतिभा वाले कथाकारों के जरिए ही संभव हो पाता है। प्रतिभा की मौलिकता का पता देने के लिए केवल बौद्धिकता अपर्याप्त है। कल्पना को मुक्त विचरण के लिए स्पेस जहाँ मिले वहीं पाठक का मन भी रमता है। लालित्य मन को रमाने में योग देता है। आज का युग निरी सूचनाओं का युग है।

0: इस युग को आज के उपन्यासकार निरी सूचना कथा बना देते हैं, इसलिए कथा वस्तु एकहरी हो जाती है। रचना में अनुभव न मिथकों का सहारा लेता है न लोक तत्वों का, इसलिए रोचकता का ह्रास होता है। लालित्य तत्व की योजना करने के लिए अपने समय के तथ्यों के खूंटों से बांधे बिना रचना में अपने समय को छविमान करने के प्रयत्न करने होते हैं। ये प्रयत्न जहाँ जहाँ आज होते देखे जाते हैं, वहाँ वहाँ एक प्रकार का लालित्य का अनुभव हमें होता है। यानी लालित्य को अब केवल उस जो हमारे यहाँ शास्त्रीय ढंग से बंटवारा हुआ था, ललित कला और उपयोगी कला, आज ज़रूरत इस बात की है कि इस भेद को, इस ललित कला और उपयोगी कला के बीच में जो दीवार खड़ी की जाती रही, उसको तोड़ा जाए। उपयोगी भी हो रचना, हमें अपने समय को समझने की दृष्टि भी दे, और लालित्य भी बाधित न हो। इसीलिए ये कहा गया कि लालित्य का अभाव अगर हमें दूर करना है तो रचनाकार को अपने लेखन में केवल तथ्यों से ही नहीं, बल्कि तथ्यों से मुक्ति इस प्रकार प्राप्त करनी होगी कि वो यह प्रभाव दे सके अपने पाठकों को कि रमणीयता भी है, आनंद भी है। पाठक को केवल दुखी करना रचना का गुण नहीं होता, दुखों का भी चित्रण इस तरह हो कि उसमें भी एक प्रकार की गहराई के साथ पाठक की आत्मीयता बन जाए। इसी रूप में लालित्य को देखा जाना चाहिए, और बेशक जहाँ इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, वहाँ कथा साहित्य में लालित्य के अभाव की शिकायत स्वाभाविक है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता, समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आशुतोष श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। तो सबसे पहले इनके स्वर में लीजिए, सुनिए ये पारंपरिक भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशुतोष श्रीवास्तव की गाए भजन और गीत। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

नमस्कार। मीडियम वेव 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। यह है आकाशवाणी प्रयागराज और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं रात के 8 और मैं आपके लिए लाया हूं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, शाम का समय होता है जब हम अपनी दिन भर की तमाम भाग दौड़ और व्यस्तताओं से हटकर जीना चाहते हैं सुकून के कुछ पल, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे जो हमें थोड़ी देर को ही सही पर उड़ा ले जाएं इस भागम भाग जिंदगी से दूर, बहुत दूर, ख्वाबों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में। ऐसी एक खूबसूरत सी ख्वाबों की दुनिया होती है प्यार की। तो चलिए आज आपके लिए चलते हैं इसी प्यार की खूबसूरत सी दुनिया में कुछ ऐसे बेहतरीन नगमों के साथ जो आपके रूह तक को महका देंगे। तो चलिए, पेशे खिदमत है आज के इस कार्यक्रम का ये पहला नगमा जो हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से और जिसे अपनी अमर आवाज़ दी है लता जी ने। गीतकार हैं अनजान और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

तो भाई कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो फिर चलिए फटाफट अपने खूबसूरत से गीतों के पिटारे से लेते हैं एक और प्यारा सा नगमा जो आपको पवन के झोंकों सा उड़ा ले जाएगा किसी खास शख्स की यादों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कहो ना प्यार है से। आवाज़ है लकी अली जी की, गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और लयबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

अगर पवन का ये झोंका आपको किसी की यादों की दुनिया में उड़ा ही ले गया तो थोड़ा ठहरिए भाई, वापसी की जल्दी क्यों? अब उस शख्स ने किया है इतना इंतज़ार तो उसे भी आपसे होंगी शिकायतें हज़ार। शिकायतें बयां होती है कुछ यूं, जैसे इस गीत के बोल हैं जिसे हमने लिया है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल जी की, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने और सुरों से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

अब भाई रूठना मनाना तो प्यार की पहली शर्त होती है, और उस महबूब की शिकायतें भी लाजमी हैं जिसने लंबी लंबी रातें आपकी यादों के सहारे काटी हैं। तो चलिए फिर देर नहीं कीजिए और मना लीजिए अपने रूठे हुए उस महबूब को इस गाने को गुनगुनाते हुए जिसे हमने खास आपके लिए चुना है फिल्म शेरशाह से। आवाज़ें हैं जुबिन नौटियाल की और गीत और संगीतबद्ध किया है तनिष्क बागची ने।

इस खूबसूरत से गीत के बाद मुझे तो पूरा यकीन है कि आपका महबूब सारी शिकवे सारी शिकायतें दूर कर आपके पास आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं आया तो लीजिए ये खूबसूरत सा नगमा उसे सुनाइए जो ये बताता है कि तू माने या ना माने तेरे दिल की हर बात मैं जानता हूँ, मुझे पता है। फिल्म का नाम है संघर्ष, गाया है सोनू निगम ने, गीतकार हैं समीर और संगीत है जतिन ललित का। लीजिए ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

सुरीले नगमों के पिटारे से एक और बेहद खूबसूरत सा गीत आपकी ओर भेज रहा हूँ। इसे सुरीली आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है भेड़िया। लिरिक्स और म्यूज़िक डायरेक्टर है सचिन और जिगर का।

लीजिए खूबसूरत गानों की श्रृंखला में एक और गीत जो पूरे यूथ का फेवरेट सॉन्ग बन गया था। इसे अरिजीत सिंह ने गाया, कबीर सिंह मूवी है और गीत और संगीत दिया है मिथुन ने। लीजिए आपके रेडियो सेट्स पर।

तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज जिन नगमों की बयार हम आपके लिए लेकर आए थे, उन्होंने आपको आपके ख्वाबों ख्यालों की दुनिया की सैर करा दी होगी। तो चलिए भाई, अब हम वापस लौट चलते हैं, क्योंकि हवाएं बड़ी चंचल, बड़ी शोख होती हैं, जाने किसे कहां कहां तक ले जाती हैं। तो लीजिए, आज के इस कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ अब आपका ये रेडियो दोस्त रोहित विदा चाहता है। फिर ऐसे ही किसी खूबसूरत से मुकाम पर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको गाने के बारे में बता दूं। इस गाने को हमने लिया है फिल्म जब हैरी मेट सेजल से। गायक हैं अरिजीत सिंह, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत दिया है प्रीतम ने।

तो इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

रक्तदान तकलीफ देह नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है। वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन

0: को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
6: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर

0: नगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल हैशटैग आस्क एआईआर के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Reigning world champion Cheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. In an all-Indian semi-final, the armless archer from Jammu defeated Sarita to book her place in the gold medal clash. She will now face Aizada Saidan of Kazakhstan in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees. Prime Minister Modi to unveil projects worth over 35,000 crore rupees in Gujarat tomorrow to inaugurate Global FinTech Fest in Mumbai. Home Minister Amit Shah says zonal councils have become instrumental for development and public welfare. Also presents President's Police Colour to Goa Police. LPG refill booking interval of 25 days to be same for urban and rural areas. Five MCD officials suspended in Satyaniketan building collapse incident. Delhi High Court orders high-level MCD inquiry. Election Commission announces by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam on 6th of October. Assembly by-polls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one in Puducherry to also take place simultaneously. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters women's compound individual final in Ahmedabad, assuring a medal for India. That's all in News at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुताल्लिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिल तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। LPG का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाक़े में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आला सतह की MCD इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का ज़िमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों, नीज पुडुचेरी में 1 सीट का ज़िमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। और अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। अब खबरें तफसील से। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुताल्लिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इन तजवीज़ों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टो लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निज़ाम की सरकारी खरीद की तजवीज़ें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइन की डिज़ाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। उधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीज़ों को मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निज़ाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई पॉलिसी रद्द अमल में कार्रवाई करने वाली से आगे बढ़कर पेशबंदी की कार्रवाई करने वाली पॉलिसी बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद कफील और पुरएतमाद बनकर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिसाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और ये वजीर आजम की सरगर्म सिफारतकारी और उनकी नजरिया

खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि कल दिल्ली के सत्यनिकेतन में गिरी इमारत के मुबैना मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को फौरी तौर पर सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान दिल्ली की सत्यनिकेतन इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी फोर्स NDRF की जानिब से जाए हादसे पर तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने इत्तला दी है कि मजमुई तौर पर 12 मुतासरीन को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी थी जबकि एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर बाद में चल बसा। एम्स ने मजीद कहा कि बचाए गए 3 अफराद की हालत नाजुक है जबकि 2 लोगों की हालत मुस्तहकम है। वहीं एक शख्स को डिस्चार्ज दे दिया गया है। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD को हिदायत दी है कि कौमी राजधानी में सत्य निकेतन के मकाम पर एक इमारत के ढह जाने के वाक़े की आला तरीन एग्जीक्यूटिव सतह पर इंक्वायरी कराई जाए और इस बात की भी जाँच की जाए कि आया ये इमारत तामीर के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं। इस वाक़े का संगीन नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट ने MCD को यह हिदायत भी दी कि वो अपने दायरे अख्तियार के तहत आने वाली सभी पेइंग गेस्ट इमारतों और हॉस्टल्स का 1 हफ्ते के अंदर अंदर जामे ऑडिट कराए। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इमारत गिरने के वाक़े की इंक्वायरी में इस बात की खास तौर पर जांच की जानी चाहिए कि आया हर तरह की मतलूबा इजाज़त हासिल कर ली गई थी या नहीं। किसी तरह की गफलत या नाकामी के लिए जिम्मेदार अहलकारों की निशानदेही की जाए और कसूरवार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुजवजा या अब तक की गई कार्रवाई की तफसील पेश की जाए। इंतखाबी कमीशन ने आसाम की नागांव लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की 2-2 असेंबली सीटों और पुडुचेरी की 1 सीट के लिए ज़िमनी असेंबली इंतखाब का भी ऐलान किया है। कमीशन ने कहा कि तमिलनाडु की मदुरन तकम और धर्मपुरम सीटों, मगरबी बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थत्ता चंदावड़ी असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात दोनों के लिए नोटिफिकेशन बुध के रोज़ जारी किया जाएगा। 16 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। राय दही 6 अक्टूबर को होगी जबकि वोटों की गिनती अगले महीने की 9 तारीख को होगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इन इत्तला को गलत करार दिया है कि इसरो की निजकारी की जा रही है। आज बेंगलुरु में CII के ज़ेर एहतमाम एक नुमाइश के मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए इसरो के सरबराह ने कहा कि इसरो एक सरकारी इदारा है और इसे प्राइवेट हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जानिब से दी गई मंजूरी और खला से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर खला के प्रोग्राम में शामिल है, जिसका मकसद इसकी सरगर्मियों में तेज़ी लाना है। इसरो के महदूद रोल और बजट से मुतालिक इल्ज़ामात पर चेयरमैन मौसूफ ने यह वाज़ेह कर दिया कि इसरो का रोल कई गुना बढ़ गया है और इसकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तस की गई रकूमात काफ़ी हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। कई मकामात पर गंगा और दीगर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे रियासत के वसी इलाके मुतासर हुए हैं। अब तक 29 लाख से ज़्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। 13 ज़िलों के 77 ब्लॉकों में 438 पंचायतों के दायरे में आने वाले लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शुमाल मशरक़ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। इस दौरान अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला और माहे में कल मौसम के गर्म और मरतूब रहने की भी पेशगोई की है। पैरा तीरंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इनफरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना लिया है। ऑल इंडिया सेमीफाइनल में बाजुओं से महरूम जम्मू की शीतल देवी ने सरिता को 143 के मुकाबले 145 से शिकस्त दी
और सोने के तमगे के लिए होने

0: वाले फाइनल मुकाबले में पहुंच गईं। फाइनल में शीतल देवी का मुकाबला कजाकिस्तान की आइजादा सैदान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिलें तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। LPG का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाक़े में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आला सतह की MCD इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का ज़िमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों नीज पुडुचेरी में 1 सीट का ज़िमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम गजलों पर आधारित कहकशां। दोस्तों, रात के इस खूबसूरत पहर में जब शहर की भाग दौड़ थमने सी लगती है तो आत्मा को सुकून देने के लिए शायरी और मौसीकी से बेहतर हम सफ़र और कौन हो सकता है। आज के इस अंक में हम सजाने जा रहे हैं कुछ ऐसी खनकती महकती हुई गज़लें जिन्हें अपनी रूहानी और सदी हुई आवाज़ से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए साज और आवाज़ के इस सफ़र में डूबते हैं और मिलकर तय करते हैं इस सफ़र को आप और हम।

राह मोहब्बत में मुश्किलें तो बहुत हैं, मगर दीवानों के हौसले कम नहीं होते। जो कांटों पर भी मुस्कुरा कर चल दे, वही लोग तो मंजिल के मुकद्दर होते हैं। दोस्तों, गज़ल सिर्फ अल्फाजों का मजमुआ नहीं, बल्कि दिल के एहसासों को संगीत में ढालने की एक हसीन परंपरा है। इश्क और मोहब्बत की राह कभी फूलों का सेज ही नहीं रही। यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा देनी पड़ती है और कांटे मिलते हैं, लेकिन जो इन कांटों को गले लगा लेते हैं वही सच्चे राही कहलाते हैं। आइए इसी जज्बे को महसूस करते हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई इस प्यारी सी गजल के जरिए।

दोस्तों, दिल की बात जुबां पर आने से पहले ना जाने क्यों निगाहें सब कह जाती हैं, और खामोशियां जब चीखने लगें तो रूह की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन बहुत कुछ कह जाता है। जब कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल के तारों को झंकृत कर देती हैं। बेगम अख्तर के गले का जादू कुछ ऐसा ही है। यहाँ संगीत का हर सुर और शब्द बिल्कुल साफ साफ दिल पर उतरता है। तो लीजिए सुनिए ज़मीर काज़मी की लिखी गज़ल बेगम अख्तर की आवाज़ में।

दोस्तों, मोहब्बत के अपने कुछ रस्में हैं, कुछ कस्में हैं। यहाँ दिल टूटने पर भी दुआएं दी जाती हैं। इश्क की दुनिया की अपनी ही रिवायतें और रस्में हैं जो आम दुनिया से जुदा होती हैं। इन रस्मों में वफा भी है, दर्द भी है और एक अजीब सा सुकून भी है। तो आइए महसूस करते हैं कतील शिफाई की लिखी इस गज़ल के साथ, आवाज़ अशोक खोसला की है।

दोस्तों, शायरी दिल के गहराइयों से निकलकर रूह तक पहुंचने का एक जरिया है। जब आंखों में छिपी नमी शेरों की शक्ल लेती है तो हर दिल गवाही देने लगता है। इसी एहसास को बयां करती एक खूबसूरत रचना हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की है।

और इसी गज़ल के साथ ही आज का कहकशां यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, जीवन का सफर केवल खुशियों से ही नहीं बना होता, कभी कभी रिश्तों में अनबन भी हो जाती है, मनमुटाव भी हो जाता है और अपने ही हमसे रूठ जाते हैं। लेकिन रिश्तों की खूबसूरती इसी में ही है कि उन्हें सहेजा जाए और प्यार से एक साथ रहा जाए। किसी शायर ने कहा है, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई मोती टूट भी जाए तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए।

दोस्तों एक बात तो तय है, जब अपनों को मनाने में इतनी खुशी मिलती है तो फिर उस रब को मनाने का एहसास कितना खास होगा। और अगर हमारा यार रूठा है तो यार और रब को मनाना लगभग एक सा ही है। इन्हीं भावनाओं को अपने मधुर शब्दों और संगीत में पिरोता हुआ अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मजबूर से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ

0: थे यार को मनाना मुश्किल।
1: लब पे दिल की बात है आई, मैं कैसे।
2: दोस्तों, जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब इंसान अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं पाता। तब उसकी दुआएं, उसकी उम्मीदें, उसके जज्बात सीधे उस परम शक्ति तक पहुंचने लगते हैं जिसे हम रब कहते हैं। कहा भी गया है, दुआओं में वो ताकत होती है जो बंद दरवाजों पर भी दस्तक दे देती है। और जब दिल सच्चा है, भावनाएं निर्मल हैं, तो हर पुकार में, हर एहसास में उसका दर्शन हो ही जाता है। ऐसे ही भाव से सजा हमारा अगला गीत प्रेम, विश्वास और भावनाओं की मिठास से भरपूर है। आइए सुनते हैं सपना अवस्थी और उदित नारायण को फिल्म जमाना दीवाना में।

और यह है हमारा अंतिम गीत फिल्म डेंजरस इश्क से, आवाजें राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म डेंजरस इश्क के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामकृष्ण का क्लैरियोनेट पर बजाया राग मारू बिहाग। आपके साथ तबले पर संगत की है सुदर्शन राम ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण का क्लैरियोनेट पर बजाया राग मारू बिहाग, आपके साथ तबले पर संगत की सुदर्शन राम ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता

0: final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. In an all-Indian semi-final, the armless archer from Jammu defeated Sarita. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर तथा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर, यह है आकाशवाणी प्रयागराज। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।